0: राम के नाम पर तो वोट लिया, पर राम का नाम बदनाम हो रहा है। अभी अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी खुलासे हुए हैं कि वहां भी चंदा चोरी हुआ है। ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में। और चंदा चोरी तो बिल्कुल साफ हुआ है, हजारों करोड़ का चंदा चोरी हुआ है उत्तर प्रदेश में, और अंदर से ही ये सब जानकारी आ रही है।
1: अगर वो आरएसएस और वीएचपी को जिम्मेवार ठहरा रहे लूट में, तो उनको एसआईटी ने समन करना चाहिए, उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये किस आधार पे कहा। ये कहने का क्या कारण हुआ कि आरएसएस ने या वीएचपी ने इस लूट में कोई हिस्सा लिया है? और अगर ये बयान सिरे से झूठा है तो सनसनीखेज और असंतोष और गुस्सा भड़काने वाला बयान है, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उनको भी दंड मिलना चाहिए।

0: चोरी, अभी आप चोरी हो रही है उधर, आपके कंट्रोल में है ना ये ट्रस्ट, हम तो नहीं है, किसी को आपने लिया ही नहीं है उसमें, आपके सब लोग बैठे चोर मंडल, तो ये जिम्मेदारी आपकी है और आरएसएस ने भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए चोरी की। एक्शन होगी मीन्स क्या होगा, जो छोटी मछली है उसको पकड़ लेंगे, बड़ी मछली को छोड़ देंगे। वहां अयोध्या में एक प्रकार से गैंग वॉर चल रहा है, अंडरवर्ल्ड एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें तान कर लोग खड़े हैं, ट्रस्ट में भी और अयोध्या में भी, कब्जा करना चाहते हैं वहां राम की अयोध्या के ऊपर, कुछ लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं।
1: उस मंदिर पे कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं, उस मंदिर पे कंट्रोल इस देश के लोगों का है। और जब हम सुनते हैं 40% पैसा ये चोरी हो गया या भ्रष्टाचार हो गया, ये गलत चीज है। जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ जो ट्रस्टीज है, ट्रस्ट में जो भी लोग है बहुत पावरफुल है, उन्होंने वहां पे करप्शन किया, इसलिए हम सबकी मांग है सबके ऊपर वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए।

0: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
1: But Ram ka naam badnaam ho raha hai abhi. Abhi Kedarnath aur Badrinath mein bhi khulase hue hain ki wahan bhi chanda chori hua hai. ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं. क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में. और चंदा चोरी तो बिल्कुल साफ हुआ है, हजारों करोड़ का चंदा चोरी हुआ है उत्तर प्रदेश में, और अंदर से ही ये सब जानकारी आ रही है.
2: अगर वो आरएसएस और वीएचपी को जिम्मेवार ठहरा रहे लूट में, तो उनको एसआईटी ने समन करना चाहिए, उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये किस आधार पे कहा. ये कहने का क्या कारण हुआ कि आरएसएस ने या वीएचपी ने इस लूट में कोई हिस्सा लिया है? और अगर ये बयान सिरे से झूठा है तो सनसनीखेज और असंतोष और गुस्सा भड़काने वाला बयान है, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उनको भी दंड मिलना चाहिए.
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: चोरी, अभी आप चोरी हो रही है उधर, आपके कंट्रोल में है ना ये ट्रस्ट, हम तो नहीं है, किसी को आपने लिया ही नहीं है उसमें, आपके सब लोग बैठे चोर मंडल, तो ये जिम्मेदारी आपकी है और आरएसएस ने भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए चोरी की। एक्शन होगी मीन्स क्या होगा, जो छोटी मछली है उसको पकड़ लेंगे, बड़ी मछली को छोड़ देंगे। वहां अयोध्या में एक प्रकार से गैंग वॉर चल रहा है, अंडरवर्ल्ड एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें तान कर लोग खड़े हैं, ट्रस्ट में भी और अयोध्या में भी, कब्जा करना चाहते हैं वहां राम की अयोध्या के ऊपर, कुछ लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं।
1: उस मंदिर पे कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं, उस मंदिर पे कंट्रोल इस देश के लोगों का है। और जब हम सुनते हैं 40% पैसा ये चोरी हो गया या भ्रष्टाचार हो गया, ये गलत चीज है। जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ जो ट्रस्टीज है, ट्रस्ट में जो भी लोग है बहुत पावरफुल है, उन्होंने वहां पे करप्शन किया, इसलिए हम सबकी मांग है सबके ऊपर वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए।

0: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
1: After multiple assassination attempts, they can't even get.
2: They're reliable.
3: Always when I need them.
0: To live sports action.
4: One hand jam by LeBron on the break.
5: That's another three, Steph Curry.
0: And your favorite music.
6: Well, the dawn begins to crack.
0: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में. और चंदा चोरी तो बिल्कुल साफ हुआ है, हजारों करोड़ का चंदा चोरी हुआ है उत्तर प्रदेश में, और अंदर से ही ये सब जानकारी आ रही है.
8: अगर वो आरएसएस और वीएचपी को जिम्मेवार ठहरा रहे लूट में, तो उनको एसआईटी ने समन करना चाहिए, उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये किस आधार पे कहा. ये कहने का क्या कारण हुआ कि आरएसएस ने या वीएचपी ने इस लूट में कोई हिस्सा लिया है? और अगर ये बयान सिरे से झूठा है तो सनसनीखेज और असंतोष और गुस्सा भड़काने वाला बयान है. उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उनको भी दंड मिलना चाहिए.

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। जो एक हेनरी फोर्ड था, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक था, उसने उस समय गाड़ी चलाई है बायोफ्यूल से, केरोसिन से, फॉसिल फ्यूल से। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने। मुझे याद था जब मैं ब्राजील में राजदूत था, मैं बात कर रहा हूं 2006 से लेकर 2008, उस समय शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, शायद उससे पहले या बाद में, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
6: जो E20 का माइग्रेशन हुआ है वो काफी कैलिब्रेटेड रहा है और काफी टेस्टिंग और सब कुछ देख के किया गया है, और उसमें काफी मतलब कि सोच समझ के सब फैक्टर्स को देख के गवर्नमेंट ने, टेस्टिंग एजेंसीज ने टेस्टिंग करने के बाद इसको लागू किया है। 2023 के बाद में जितनी भी गाड़ियां बिक रही हैं वो E23 मटेरियल कंप्लायंट है, E20 मटेरियल कंप्लायंट है, और उससे पहले भी जो गाड़ी थी उनके टेस्टिंग से ये दिखा कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप E20 डालते हैं।

0: start this edition with some news just coming in at this point in time. It's got to do with the Ram Mandir Chief Minister Yogi's big signal amid Chanda Chori controversy. All eyes are on the CM's Prayagraj visit. Yogi Adityanath to unveil temple titan Ashok Singhal's statue. Yogi trip amid high stakes drama Mandir Trust meeting. Several senior VHP leaders are present in Ayodhya. Trust likely to name new office bearers. Ex-General Secretary Champat Rai faces lifetime ouster from the trust. Yogi's Prayagraj visit is seen as politically significant and important messaging at a time when the Mandir is in news for all the wrong reasons and has got to do with Chanda Chori at the temple. Ashish has more on that story. Many VHP leaders are going to be at the point where Ashok Singhal's statue is going to be unveiled. This comes amid heightened investigations in this entire matter. It clearly does appear that Champat Rai, the news around Champat Rai is only tightening as well.
1: Yeah, of course. This is a big step of Chief Minister Yogi Adityanath in Prayagraj, where he will inaugurate a Prerna Park and in which unveil the statue of senior leader of VHP, Ashok Singhal. So this will be done at the same moment when Ayodhya, where we can say that the trust meeting is going on and where the action also will be taken against to the Champat Rai, General Secretary of the Trust, and other Anil Mishra. So both are there. And this time when Chief Minister Yogi Adityanath in Prayagraj, he will unveil the statue of senior VHP leader Ashok Singhal. So this is connecting to VHP to both angle, as where in Ayodhya the action will be taken, but the another way where we can understand in Prayagraj, Chief Minister Yogi Adityanath will unveil the statue of senior leader of VHP Ashok Singhal. So this will be connected each other because of in Ayodhya the important leader of this Hindu Parishad is available and they are just joining now because new member also have been called in Ayodhya like Bangar and other. So it means that this is seen that the both is connected, like in Prayagraj where the senior VHP leader's statue will be unveiled and the another this meeting which is going on in Ayodhya trust, which is also very important due to this scenario. And the Chief Minister Yogi Adityanath,
0: Ashish Srivastava, with the very latest on that story. I'm going to leave it at that for the moment, getting in those details and telling us about that important meeting of the Chief Minister in Prayagraj today. Endgame Champat Rai at this point in time. But sources telling us that Champat Rai and Mishra set out for a complete exit from the trust. Sources say the resignation is likely to be accepted at today's trust meeting, is what we are learning at this point in time. Both set to lose lifetime trust membership at this point in time, given the scrutiny to the Chanda Chori allegations. Ayodhya Trust may name Champat's successor today. Major organization overall also looming large here. Once their resignations are accepted, Champat Rai and Anil Mishra will completely exit the trust. Well, they will step down not only from their official positions, but also relinquish their lifetime memberships. Resignations of Champat Rai and Anil Mishra set to be accepted during the trust meeting. Only the formalities remain. Press notes will be issued by the trust immediately following the meeting. Upon the acceptance of their resignations, an interim arrangement will be put in place to determine who will oversee the trust's operations in their absence. Santosh has got more on that story. Santosh, is samay ye inevitable hi hai ek tarike se Champat Rai Anil Mishra naam jo hai unka allegations mein aa chuka hai aur zahir hai ki koi tarah ka action liya jayega. Aakhirkar ye bhakton ke devotion aur unke jo sentiments se usse juda hua mamla hai. Donations se jo chanda mandir ke liye diya ki to aakhirkar uski chori hui hai.
2: देखिए, बिल्कुल, ये भक्तों के डिवोशन का, एक भक्तों के भरोसे का सवाल है और सवाल यहाँ पे
0: We just apologize for that line with Santosh. We'll connect with him in a moment from now. It seems to have some disturbance there, but the Ayodhya Trust could now be naming the successor of Champat Rai. Clearly, they would be asked to exit pretty much from the trust and would not get an opportunity ever to serve within the trust. Even as the police investigations continue parallelly in this case. In the meeting today, there would be a decision that would be taken on the successor of Champat Rai. I'm going back to Santosh. He was telling us about what really is expected today. Santosh, kya aur details ab share kar sakte hain? Meeting bhi aaj trust ka hai jahan par ye decide kiya jayega ki Champat Rai ko succeed kaun kare.
2: देखिए चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने इस्तीफा दे दिया. आर राम मंदिर परिसर में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक है और जो जानकारी मिल पा रही है कि दोनों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाएगा जो अभी तक जो सोर्सेस से जानकारी मिल पा रही है. और उसके बाद जो SIT उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है उस SIT के फाइनल रिपोर्ट जो डिटेल रिपोर्ट होगी उसके रिपोर्ट आने के बाद उसमें चूंकि सिफारिश की जाए भी है SIT क्या फाइंडिंग्स देती है, कहाँ पे चूक हुई, कहाँ पे किस तरीके से लापरवाही बरती गई और इन फ्यूचर किस तरीके से स्टेप्स उठाए जाएँ, क्या SOP बनाई जाए, क्या स्टैंडर्ड आउट किया जाए कि जिसकी वजह से भविष्य में ऐसा ना हो, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स क्या होनी चाहिए, तो उनको ध्यान में रखते हुए रिस्ट्रक्चरिंग होगी राम मंदिर ट्रस्ट की, इतना ज़रूर है. लेकिन आज की ये बैठक सबसे एजेंडे कई हैं लेकिन इसमें सबसे प्रमुख एजेंडा जो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के दिए हुए इस्तीफे पर फैसले की. हालांकि उसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है. जो हमारे पास जानकारी है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा और उसके बाद ट्रस्ट के कामकाज की रिस्ट्रक्चरिंग होगी, कामकाज की और इवन ट्रस्ट की भी रिस्ट्रक्चरिंग होगी. आज चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो राम मंदिर में पैसा आया, उसका खर्च हुआ, उसका भी ब्यौरा रखा जाएगा. साथ ही SIT के लिए जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको भी ट्रस्ट के सामने रखा जाएगा कि क्या फाइंडिंग्स हैं. जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हो रही थी तो SIT ने क्या प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया, ये भी बातें आज ट्रस्ट में डिस्कस होंगी. जी
0: ये हमारे साथ संतोष विद द वेरी लेटेस्ट ऑन दैट स्टोरी. वी विल कम बैक टू यू इन अ मोमेंट फ्रॉम नाउ टू टेल आवर व्यूअर्स अ लिटिल अबाउट व्हाट इज एक्सपेक्टेड एज फार एज चंपत राय इज कंसर्न. व्हाट वी डू नो इज दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्लियरली ऑफ द सक्सेसर बीइंग डिसाइडेड. सो द आउस्टर इज प्रीटी मच सर्टेन, इजंट इट समर्थ? इफ नॉट द आउस्टर देन व्हाट? Given that the buck actually stops there, Champat Rai, Anil Mishra, two important office bearers, there's no way that they didn't know all of this was going on. But I want to know, apart from the ouster, what about the legal case against them?
3: See, Sneha, one thing is very clear. Firstly, the way this the meeting is happening out here in Ayodhya and talks about Champat Rai and Anil Mishra's resignation are quite clear now. What we are getting from sources, the resignation could be accepted right over here. As you see the visuals of a lot of policemen stationed here as the meeting is happening right here. You can see the inspector Pankaj Singh right here moving across this particular area. The high profile meeting is happening. This is Govind Giriji Maharaj, the person who is responsible for all the counts purposes of the trust meetings. He's inside. The new faces who can be inducted, Krishna Mohan, Bajrang, and many other faces are inside that particular meeting area where the big meeting is happening in the Vaidehi Bhavan. So these are the visuals we are showing you on India TV currently, ahead of the 3 p.m. big meeting where the fate of Champat and Anil Mishra will be decided. Another meeting is happening out here where Govind Giri is there, Gopal Rai is there, Bajrang is there, and from VHP obviously, and Krishna Mohan is inside. Krishna Mohan is a very important person, key person, who was the person who made the FIRs against the 8 accused. And the important point is that you can see the movement of vehicles all across happening, right across that particular area. The police is stationed here in the big numbers. And you can expect the movement from here in any time soon. So you can expect some other faces coming from inside. And we will also try to, in a way, ask some questions in about this particular meeting. As you see,
0: Summers,
3: the visuals out here, the inspector of this particular area along with the forces right now. Yes, Sneha.
0: Be with us. Coming back to you in a moment from now, Samar Srivastava with the very latest and important meeting today to decide the future course of action as far as the mandir and the management is concerned. It's a trust that manages, and Champat Rai's ouster is really certain at this point in time. The trust is to vote on Champat Rai's resignation. So we will know on which way the wind is blowing as far as the trust or lack of it on Champat Rai is concerned. Two-thirds majority needed for the ouster remains to be seen whether that happens or not. Champat may get to present his side as well, tell his side of the story on whether he knew about this. If he did, what did he do? If he didn't, why was he not in the know when he was in an important position? How can he be so oblivious? These are questions that he may have to answer. May be served a notice before the final call. Big indications that resignation is going to be accepted. Outcome could reshape the trust leadership. Decision to signal the trust stand on accountability. The move seen as crucial to restoring the confidence of devotees. Remember, at the end of the day, these are the devotees who put their faith on the trust and donated money for the temple. But where did it go? It was being looted. SIT's findings could influence the trust move as well. Whatever the investigations find will have a bearing on the decision that is finally taken by the trust on the leadership change. What about the front runners here for the post of that was being held by Champat Rai? And a little about Bajrang Lal Bangra, Central and International Secretary of the Vishwa Hindu Parishad, a chartered accountant by profession, ex-chairman and MD of the National Aluminium Company, has vast experience in administration and the field of administration, associated with multiple NGOs. That's what we know about the possible front runner who could be taking or stepping into Champat Rai's shoes. Ram Mandir donation theft probe scoop here or India Today. Cops claim massive breakthrough in the probe. 5-hour jail interrogation on yields. Fresh results. Fresh immovable assets under police scanner. Cops trace more properties with stolen funds. Missing donation money trail has now been cracked. While the police here are claiming that the traced remaining stolen funds recovery drive may gather pace next. Cars, land, houses, mobiles bought by the accused probe widens beyond cash recoveries at this point in time. Let's tell you a little more before we get across to our reporter. In a second from now, we're telling you about immovable assets which are under the scanner of the police and the latest in the investigations right here. Here is what we have picked. Santosh has more. Movable, immovable assets police ke scanner mein hai aur properties jo churaye hue paise se khareede gaye the wo bhi scanner mein hai. Investigations mein kya latest hai, kya bata sakte hai Santosh aap hame?
4: Dekhiye, kal jail mein poochtaach ke baad jo 5 aaropiyon se kareeb 5 ghante tak poochtaach ki gayi Ayodhya police ki team ne, aur uske baad ab mana ja raha hai ki inko police custody remand par liya jayega. वजह यह है कि इनके द्वारा जो कप डोनेशन से जो पैसा इकट्ठा किया गया था वो उस पैसे से कुछ सामान खरीदा गया जिसमें इमोवेबल प्रॉपर्टी व्हीकल्स है, कार है, बाइक है और कुछ ज्वेलरी है जिसको रिकवर कराने के लिए पुलिस इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड लेगी और कल 5 घंटे की पूछताछ के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है कोर्ट में पेश करने के लिए उसको पूरा किया जा रहा है और उसके बाद इनके पीसीआर दाखिल करेगी. पीसीआर पर लेने के बाद इनसे वो सामान भी बरामद करने की कोशिश करेगी जो इनके द्वारा चोरी के चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदा गया. जैसे अविनाश शुक्ला ने ब्रेजा कार बरामद करवाई थी, ठीक उसी तरीके से चाहे अनुकल्प मिश्रा हो, चाहे लवकुश मिश्रा हो, करुणेश पांडे हो, रमाशंकर यादव हो या उसका भतीजा मनीष यादव, ये तमाम लोग हैं जिनसे पूछताछ की गई और उस पूछताछ के बाद अब इनसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की इनको तैयारी है. जी,
0: हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष गैरिंग इन दोस डिटेल्स. शुक्रिया फॉर गेटिंग ऑस दोस डिटेल्स एट दिस पॉइंट इन टाइम एज फार एज द इन्वेस्टिगेशंस आर कंसर्न्ड. लेट्स टेल यू लिटिल अबाउट टेलिंग द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम हियर. Avinash Shukla is the accused, remember? Proceeds of crime that have been seized from him is to the tune of 20 lakh rupees in cash. Foreign currency in US dollars also to the tune of 1,121. Vehicle, Brezza car, like Santosh was mentioning. Valuables as gold, silver jewelry. 19 lakhs spent on friends and family. That too is something that the police have found so far, as far as Avinash Shukla is concerned. So that's the amount to tell our viewers on your screens at this point in time. Brezza car, gold and silver jewellery, 20 lakh in rupees, over $1,000. American dollars is what has been found. Let's move ahead and tell you more about money that was spent on friends and family. 19 lakh on friends and family, 6 given to brother for wedding, 5 to 6 lakh given to another brother. Purchased car worth 3.5 lakh rupees. That too is something that is being accounted for. 2.5 lakh transferred to a friend. Expensive mobile phone gifted to a friend. This, of course, we're learning through our sources. Well, the probe in the Ram Mandir Chanda Chori case is at a crucial turn now, and all eyes are on the crucial meeting of the Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust. The temple body convening a key meeting soon, where possible resignations of Champat Rai and Anil Mishra are expected to come up. The exit of almost these people that I mentioned seems certain. Bajrang Lal Bagda is the international general secretary of the Vishwa Hindu Parishad, and he seems to have emerged as a front runner here. In another twist in the Chanda Chori case, a former IAS alleged that a gold-plated copy of the Ram Charitra Manas worth 5 crore rupees donated by his family was missing. Now, Ram Mandir Trust has issued a clarification and said the holy scripture is safe in the vault of the temple. The trust added that earlier the manuscript was kept in the sanctum sanctorum of the temple and later in the vault. Political temperatures are soaring as well. BJP chief Nitin Naveen has launched a sharp attack on the opposition, accusing them of questioning Lord Ram's existence, accusing some political parties of attempting to mislead public faith. Opposition has hit back, accusing the BJP and its ally of disrespecting the constitution and alleging irregularities, including the missing gold-plated Ram Charitra Manas, while charging the ruling side with widespread corruption.
5: अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था। मैं फिर आज दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को पूछना चाहिए उन लोगों से कि बाबरी मस्जिद का जो चंदा एकत्र हुआ था वो कहां चला गया, जो हमारे अखबारों में समय समय पर इस प्रकार की खबरें आती हैं कि मदरसों के लिए जो फंडिंग हो रही है कहां से हो रही है, जो वक्त में घोटाले हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं जवान सिले हुई समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सनातन संस्कृत को बदनाम करने की साजिश करने का पूरी तरह से जो इन्होंने प्रयास किया है उसको हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। और
6: अहेड ऑफ द बिग मीटिंग of Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra at 3 p.m. today, another meeting is taking place in Ayodhya, and that is between Govind Giri, Krishna Mohan and Bajrang, two new faces who can be inducted in the Temple Trust in place of Dr. Anil Mishra and Champat Rai. We are reporting from a place where this particular meeting is happening. This is Sri Vaidehi Bhavan, where Govind Giri, who is someone who is responsible for the accountant thing in the Temple Trust, is taking meeting with both of them. Bajrang is from VHP, and I must tell you that Bajrang Bangra is a big face and he has been very active throughout. He is a chartered accountant, while another name, Krishna Mohan, he is also an old associate in Ayodhya and has been the name who he is the one who in a way filed a complaint regarding the FIR of the 8 accused in this particular matter. And that's why it is being said, as per the sources, that Anil Mishra and Champat Rai could be replaced by these two. And that's why Govind Giri is having a meeting right over there, ahead of the big meeting at 3 p.m. in Ayodhya. With cameraman Gaurav Gupta, Samarth Srivastav for India Today.
7: 3 o'clock meeting is in the temple. Nitya Gopal Das ji karenge.
8: जो महाकुंभ को मृत्युकुंभ बोलते हैं वो हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे, उससे हम लोग को शिक्षा लेना पड़ेगा। तो हम लोग देख लिया है कि इस इतना सालों से हिंदू के साथ पश्चिम बंगाल में कैसे अत्याचार हुआ है, कैसे हम लोग को रामनवमी हम लोगों को केस दिया गया है, अभी भी हम लोगों के ऊपर केस है। 10 साल हो गया है, अभी भी केस है रामनवमी के ऊपर, लेकिन जब मुहर्रम होता था तब कुछ नहीं बोलते थे। तो यही तो पूरा तुष्टिकरण का राजनीति पश्चिम बंगाल में चले है।
9: संजय सिंह ने तो सबूत दिए हैं भाई, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं कि एक जमीन रातों रात कितने करोड़ की आपने ली और कितने करोड़ की बेच दी। उनके दस्तावेज को विवेचना में शामिल करिए ना, और आप जो बात कह रहे हैं मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी, हर चीज के ऊपर मिट्टी डाल देंगे, लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होगा। आप आपको ये अधिकार है कि आप लोगों की आस्थाओं के साथ नफरत बांट करके खेल भी लेंगे।
10: अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झांकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील। अटल जी जे बोलले होते अब हिंदू मार नहीं खाएगा, लेकिन हिंदू को लुटने वाली सरकार वहां बैठी है, ये दुर्भाग्य है आपलं, हे दुर्भाग्य आहे। म्हणून मी आज तो परत नारा बुलंद करतोय, जेव्हा हिंदू भीतीग्रस्त होता आणि कोणालाही हिम्मत होत नव्हती की हिंदू मी हिंदू आहे बोलायची, तेव्हा शिवसेना प्रमुख गरजले होते, गर्व से तो हो हम हिंदू है, ते हिंदू तो मला आज पुन्हा जागा करायचंय। हा हिंदू हा काही वेडा नाहीये।
0: More news coming in. Let's tell you about Ram Mandir Trust meeting scheduled with India today. Now, Champat Roy is going to be presenting his version of events. He will be given an opportunity to speak, is what we are learning at this point in time. Given that his name has figured in all of this, somebody is a part of the trust, and how is it that he did not know or whether he looked the other way? He is going to be asked to explain. Champat Roy, we are hearing, could be offering his resignation on moral grounds again. Anil Mishra also likely to offer his resignation. Treasurer Govind Dev Giri to explain financial details. Top saints and trustees to share views on Chanda Chori. Trust head Parasaran to offer legal advice. Trust to act on the basis of FIR in the Chanda Chori case. A lot depends on the SIT and the investigations also and where they are headed. Ashish has more on that story. Ashish, voting bhi hogi ye decide karne ke liye ki Champat Roy aur Anil Mishra ka fate kya hai. SIT ki jo investigations hai wo bhi dikhayengi कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है इस पूरे मामले में।
1: बिल्कुल, देखिए जो पूरा प्रोसेस है, जो सीक्वेंस है मीटिंग का, उसमें ये साफ किया गया है कि कैसे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज, क्योंकि नितिन गोपाल दास क्योंकि अस्वस्थ हैं तो उनकी जगह पर रिप्रेजेंटेटिव उनके कलीग आएंगे और वो पूरी मीटिंग का एजेंडा सामने रखेंगे। और सबसे पहला ही जो पहले तो चंपत राय को बुलाया जाएगा और चंपत राय अपने बारे में दलील पेश करेंगे, क्योंकि जो भी सुनहरियो पूरा हुआ है, जिसके बाद उनका मॉरल ग्राउंड पर एक तरीके से लिया जाएगा रेजिग्नेशन की, जो सुनने के बाद उसके थर्ड फ्रंट में अनिल मिश्रा को बुलाया जाएगा पूरी कमेटी के सामने, और वो उस मॉरल ग्राउंड पर उनसे भी पूरी तरीके से शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक करके जानकारी ली जाएगी। जानकारी लेने के बाद जो उनका रेजिग्नेशन है वो मॉरल ग्राउंड पर ही उनसे रेजिग्नेशन लिया जाएगा। इस बार गोविंद गिरी जो है, क्योंकि फाइनेंस के हैं, वो पूरा डिसीजन एक तरीके से मेकर भी हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको लेकर भी वो डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात है जो एडवोकेट हैं परिषद के, वो भी अपनी राय और जो मशवरा है वो एडवाइस रखेंगे इस पूरे मामले पर कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। तीसरी चौथी सबसे बड़ी बात है कि जो नाम आ रहा है बजरंग लाल बांगुर का, उनको भी प्रेजेंट किया जाएगा ट्रस्ट के सामने। तो ये जो प्रोसीडिंग है वो स्टेप बाय स्टेप शुरू होगी और पहली ही पेशी में चंपत राय को सामने खड़ा करके उनसे सारी जानकारी ली जाएगी और उसके बाद उनसे मॉरल ग्राउंड पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये तो साफ हो गया है कि जो मीटिंग है उसका एजेंडा सिक्वेंस बाय सिक्वेंस है, एक एक करके वो सारी पूछताछ, इसमें लीगल एडवाइस भी रखी जाएगी, साथ ही साथ ट्रस्ट के नए मेंबर को जो सजेशन दिया जाएगा वो भी लाया जाएगा, और इसके साथ साथ जो डिसीजन हैं वो भी लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर जो नए मेंबर्स को लाया जाना है उसके लिए वोटिंग मत भी होगा, और साथ साथ इनको क्या पद मिलना है अब, यानी कि अगर यहाँ से हटाए जाते हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा तो इसके अलावा वो किस जगह पर रहेंगे और उनके क्या कार्य रहेंगे, ये भी महत्वपूर्ण डिसीजन होगा। कहीं ना कहीं ट्रस्ट अपनी जो कह सकते हैं जो ट्रस्ट बनाने की कोशिश है वो इस मीटिंग के जरिए है, और इसी वजह से सिक्वेंस वाइज इस पूरे मोरल पर चंपत राय अनिल मिश्रा के साथ साथ जो नए पदाधिकारी हैं उन पर पूरी नजर बनी रहेगी और उन्हीं के जरिए इस मीटिंग के सीक्वेंस को आगे बढ़ाया जाएगा। जो फाइनल डिसीजन निकल कर आएगा उसी पर सबकी एक साथ मोहर लगेगी, क्योंकि वोटिंग के जरिए भी सभी को एक साथ एक पटल पर रखा जाएगा।
0: बिल्कुल आशीष, जुड़े रहिए हमारे साथ। आशीष गेटिंग इन ऑल ऑफ दोस डिटेल्स।

0: चोरी, अभी आप चोरी हो रही है उधर, आपके कंट्रोल में है ना ये ट्रस्ट, हम तो नहीं है, किसी को आपने लिया ही नहीं है उसमें, आपके सब लोग बैठे चोर मंडल, तो ये जिम्मेदारी आपकी है और आरएसएस ने भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए चोरी की। एक्शन होगी मीन्स क्या होगा, जो छोटी मछली है उसको पकड़ लेंगे, बड़ी मछली को छोड़ देंगे। वहाँ अयोध्या में एक प्रकार से गैंगवार चल रहा है, अंडरवर्ल्ड एक दूसरे के खिलाफ बंदूक के तान कर लोग खड़े हैं, ट्रस्ट में भी और अयोध्या में भी कब्जा करना चाहते हैं। वहाँ राम की अयोध्या के ऊपर कुछ लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं।
1: उस मंदिर पे कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं, उस मंदिर पे कंट्रोल इस देश के लोगों का है। और जब हम सुनते हैं 40% पैसा ये चोरी हो गया या भ्रष्टाचार हो गया, ये गलत चीज है। जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ जो ट्रस्टीज है, ट्रस्ट में जो भी लोग है बहुत पावरफुल है, उन्होंने वहां पे करप्शन किया, इसलिए हम सबकी मांग है सबके ऊपर वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए।

0: Well, it's clear it's end game. Champat Rai, sources say Champat Rai, Anil Mishra set for a complete exit from the Ram Mandir Trust. Resignations likely to be accepted at today's trust meeting. Both set to lose lifetime trust membership. Exit isn't limited to their office bearer post. Ayodhya Trust may name Champat's successor as well in the meeting. Major organizational overhaul looms. Once their resignations are accepted, Champat Rai and Anil Mishra will completely exit the trust. They will step down not only from their official positions, but also relinquish their lifetime memberships. Resignations of Champat Rai and Anil Mishra are set to be accepted during the trust meeting. Only the formalities remain. Press notes are going to be issued by the trust immediately. Upon the acceptance of the resignations, an interim arrangement will be put in place to determine who will oversee the trust operations in their absence. Samar Srivastav tracking that big story, joining us from Ayodhya at this point in time, has more. Samar, this was inevitable, right? But what about legal action against these two men?
1: See, it will be worse now because the time for the meeting is 2 p.m. and what you're hearing from the sources is that the exit of Champat Rai and Anil Mishra is most likely in this particular case. And also, we have spoken to a lot of devotees out over here, and they even want to say that the responsibility should be held in this particular case of the claim. But it is not about the Ram Temple of Ayodhya. The image of Ayodhya must not be diminished, and that's why such crucial action is required in this particular case, so that no one else in further in future could do such grave crime and when it comes to the temple donation. So that's what the people of Ayodhya see right now. And what we know that Govind Giri is having a meeting with Krishna Mohan and Bajrang right over here on the Rich Prince Commission, who are most likely to be the replacement of Anil Mishra and Champat Rai in the trust. So we can expect some new names also being inducted in the trust in the time to come, because it's 3 p.m. at least a few hours away, and 3 p.m. a crucial meeting will be taking place. Or what you're getting for sources is very pertinent to Mishra. Is not visiting Ayodhya. He might be joining that particular meeting via Zoom call or online message. So it's going to be worth seeing how the situation prevails from here. It's going to be a crucial day, especially for Champat Rai and Anil Mishra. That's it.
0: You know, talk to us about what next as far as the successor is also concerned. What are you picking up? And also, how is that really decided also?
1: See, the names of Krishna Mohan are making the rounds for the replacement of Champat Rai. And another name which is making the round is one of Neeraj Doneria. He's from the Bajrang Dal. And another name making the round is of Bajrang Bangra. He's the Mahamantri in the Vishnu Hindu Parishad. So these names are making the rounds for the replacement purposes of Champat Rai and Anil Mishra. And that's why in the due course, when the meeting will conclude, we can expect some press information by the trust themselves, whether the resignation has been accepted or not, number one. And number two, whether the resignation is accepted, then who are the replacements for Champat Rai and Anil Mishra? Back to you.
0: Samar Srivastav with the very latest on that story. Also, take our viewers through the investigations in this entire matter, the direct involvement of these two men, Anil Mishra and Champat Rai. What are you picking up as far as the direct involvement in this criminal case is concerned? Samarth. Clearly, it's endgame. Champat Rai is what it appears they could be offering in their resignations at a time, viewers, when questions are being raised on their conduct as a part of the trust. Didn't they know about this, which was going on, the theft that was going on at the temple? Where does the buck really stop? That is for the investigators to now see. More news coming in. Well, here is how the Chanda Chols operated. Secret signals, silent operations, stolen cash stashed in bathrooms. Organized the Mandir loot, and these details are with us. It's a big reveal where theft was meticulously pre-planned. Well, the accused here maintained silence to avoid suspicion. Ram Lalla donation theft details in the probe reveals the modus operandi. During this investigation, it's been found how the accused counting staff operated inside the Ram temple. The investigation has revealed that the staff accused of stealing donations from the Ram Lalla temple behaved like seasoned criminals while counting offerings. Investigators are in fact talking about this entire case and what really happened here. The modus operandi. Investigating agencies are conducting a detailed probe into the entire sequence of events. Ashish has got more details on that story. Ashish, kya details is samay share kar sakte hain hamare saath? Jo stolen money tha, wo bathrooms mein chhipaya gaya tha, dusre locations mein bhi rakha gaya tha.
2: देखिए बिल्कुल जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो चोर थे, यानी कि जो कह सकते हैं जो गणना करते थे, वह इतनी साइलेंटली वहां पर बैठते थे जैसे कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है. यही नहीं, जब वो बैठते थे तब वो बातचीत तक नहीं करते थे, यानी कि एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं थे गणनाकर्मी, जिसकी वजह से ये साफ रहता था कि हमें कितना काउंटिंग चुराना है, कितना चंदा लेना है या कितनी चोरी करनी है. और इस गैस्चर से, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो मिले हैं उसमें इस तरीके से देखा गया है कि सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं लेकिन ना ही किसी से बातचीत कर रहे हैं, ना ही किसी कोई गैस्चर दे रहे हैं, इवन ना ही कोई किसी तरीके का इशारा कर रहे हैं. लेकिन कोड वर्ड में उनको पता है कि वो कितना चंदा वहाँ से हमें निकालना है और किस हिसाब से हमें बाहर इससे मिलना है. तो ये एक बड़ा मोडस ऑपरेंडी जो थी उनकी, वो बड़ी टेक्निकल तरीके से और उसके लिए बड़ा प्रोफेशनल जो अपराधी होते हैं उसकी तरह वो कर रहे थे बिहेव, ना कि वो एक नौसिखिए की तरह, क्योंकि उनको मालूम था कि चारों तरफ सीसीटीवीज हैं, चारों तरफ पूरी जानकारी है, कहीं ना कहीं हम ट्रैप हो सकते हैं. इसलिए वो पहले से ही जब गणना रूम में एंट्री करते थे उस दौरान कॉन्वर्सेशन हो जाता था कि कौन किस सीट पर बैठेगा और वहाँ से कितनी गणना करनी है. ना ही उस दौरान कोई किसी से बातचीत करेगा, गैस्चर देगा और ना ही किसी प्रकार का कोई साइन देगा जिससे कि किसी भी तरीके का कोई इंडिकेशन सीसीटीवी में जा पाए. और ये एक प्रोफेशनल अपराधी की तरह से ये किया जा रहा था, जिससे कि काफ़ी वर्षों से जब ये चालू हो रहा था तब किसी को कोई शक भी नहीं हुआ इसमें कि इस तरीके से जो दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं, एक पास बैठे हुए हैं, वो चंदा चोरी कर रहे हैं. यानी कि उनके गैस्चर से, उनके फेस एक्सप्रेशन से ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वही दो लोग जो आसपास बैठकर गणना कर रहे हैं वो वहाँ पर चंदा चोरी कर रहे हैं. तो ये सबसे बड़ा मामला निकल कर आया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि आखिर कैसे चंदा चोर जो अपराधियों की तरह प्रोफेशनल मोडस ऑपरेंडी अपना रहे थे और एक टेक्निकली तौर पे कहीं फेल ना हो, कहीं से ग्लिच ना आए, इस वजह से वो पूरी तरीके से चंदा चोरी करने में सफल होते गए थे. और वो अब एसआईटी की जांच में ट्रैप हुआ है और ट्रैप होने के बाद एक एक करके जब उनके गुनाह सामने आए हैं तब ये सारी बातें सीसीटीवी के जरिए, वहाँ से जो रिकॉर्ड किया उसके जरिए और जब पूछताछ हुई तब ये रिवील हो रहा है. यानी कि ये तो साफ है कि जो भी चोरी हो रही थी बहुत ही माइक्रो लेवल पर उसको अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी वजह से किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही थी और इसी वजह से चंदा चोर चोरी करने में काफ़ी हद तक सफल भी हो पाए. और इसी वजह से वो एक साथ बैठकर एक रूम में जब गणना कर रहे थे वहीं से वो चोरी करते जा रहे थे, किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही थी. यानी एक हाथ से वो काम कर रहे थे तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लग रहा था. इस तरीके की मोडस ऑपरेंडी अपराधी अपना रहे थे और इसी वजह से इतने लंबे समय से वो चंदा चोरी कर पाए और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही वो पूरी तरीके से इतना लाखों लोग जो आभूषण है या चंदा है वो कहीं ना कहीं चोरी हुआ और इसके बाद बरामद भी हुआ है. तो ये तो साफ है कि अपराधियों की तरह सभी प्रोफेशनल कार्य कर रहे थे और चंदा चोरी में इनका बड़ा हाथ है. इसी वजह से इनको अब एसआईटी ने और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर लिखने के बाद गिरफ्तार किया है. अब और लोगों की भी तफ्तीश की जा रही कि कौन कौन लोग और शामिल हो सकते हैं इसमें जो कि इनकी मदद कर रहे थे और साथ ही साथ क्या ये लोग भी उनके साथ हैं जो और लोग बाहरी लोग हैं. उन बाहरी लोगों के बारे में भी जानकारी की जा रही है कि आखिर वो कितनी हद तक इनकी सबकी मदद करते रहे हैं और उनका कितना बड़ा रोल है. तो ये प्रोफेशनल गेम पूरी तरीके से चल रहा था और उसको लेकर ही पूरी कार्रवाई की गई है. जी
0: आशीष, गेटिंग आस दोस डिटेल्स. आशीष, ये भी बताइए कितने समय से चल रहा था, समय इन्वेस्टिगेटर्स क्या कह रहे हैं?
2: देखिए जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये साफ बताया गया है कि ये सभी बहुत समय से कर रहे थे, क्योंकि इसको करने के लिए बाहर मीटिंग होती थी परिसर के बाहर और फिर उसके बाद जब गणनाकर्मी पहुंचते थे तो वहां पर कोई एक्सप्रेशन, कोई साइन नहीं होता था. इसी वजह से जब पहले ये बाहर बात करते थे, और ये ना कि सिर्फ अभी से शुरू हुआ है, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उसके बाद से चंदा चढ़ावा शुरू हुआ है उसके बाद से ही ये लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे. और ये स्ट्रैटेजी भी बनी है कि कैसे हम गणना क्षेत्र से चंदा चोरी कर सकते हैं, उसको लेकर भी एक दूसरे से बातचीत होती थी. कई ऐसी चैट्स हैं जो एसआईटी को मिली हैं जिसमें मिलने का, मीटिंग करने का जरिया भी बरामद हुआ है. यानी कि ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं ये सभी पूरी तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र कर रहे थे और काफी समय से कर रहे थे, इसी वजह से, क्योंकि गणना करने के दौरान हम एक साथ एक अमाउंट को नहीं निकाल सकते थे, इसलिए उनका पर डे जो काउंटिंग होती थी, पर डे काउंटिंग के हिसाब से ही उसमें पैसे और वो चंदा जो है वो निकाला जाता था, जिसको अलग अलग रूप में बांटा जाता था। और यही वजह है कि जब चंदा चोरी की गई तो उसको काफी समय से किया जा रहा था, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उसके बाद से चढ़ावा आना शुरू हुआ है, यानी कि बिल्कुल मान के चलिए कि 2-3-4 साल से ये लगातार इस लेवल पर चल रहा था कि धीरे धीरे ये लोग अपना घड़ा भर रहे थे। वो घड़ा अपने आप तो वो बूंद बूंद भर रहे थे, लेकिन ये पाप की तरह घड़ा उनका भर रहा था जो अब जाकर फूटा है और जिसमें ये सारी चीजें निकल कर सामने आई हैं। जी
0: Ashish, with the very latest on that story, putting that into perspective in the manner in which this theft was really carried out, telling us about how the thieves operated here. The probe in the Ram Mandir Chanda Chori case is at a crucial turn. All eyes on the crucial meeting of the Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. The temple body convening a meeting. Possible resignations of Champat Rai and Anil Mishra are expected to come up. The exit of both the office bearers is almost certain. Once the resignation of Champat Rai and Anil Mishra is accepted, they will not just step down from the positions held in the trust, but will lose their lifetime membership. Both the office bearers will be given a chance to present their side. 2/3 majority is going to be required for their ouster. Bajrang Lal Bagta, the International General Secretary of the Vishwa Hindu Parishad, has emerged as the front runner. In another twist in the Chanda Chori case, a former IAS officer alleged that a gold-plated copy of the Ramcharitmanas worth 5 crore donated by his family was missing. Ram Mandir Trust has issued a clarification and said the holy scripture is safe in the vault of the temple. The trust also added that earlier the manuscript was kept in the sanctum sanctorum of the temple and was later kept in the vault.
3: Ahead of the big meeting of Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra at 3 p.m. today, another meeting is taking place in Ayodhya, and that is between Govindgiri, Krishna Mohan and Bajrang, two new faces who can be inducted in the Temple Trust in place of Dr. Anil Mishra and Champat Rai. We are reporting from a place where this particular meeting is happening. This is Sri Vaidehi Bhavan, where Govindgiri, who is someone who is responsible for the accountant thing in the Temple Trust, is taking meeting with both of them. Bajrang is from VHP, and I must tell you that Bajrang Bangra is a big face and he has been very active throughout. He is a chartered accountant, while another name, Krishna Mohan, he is also an old associate in Ayodhya and has been the name who he is the one who in a way filed the complaint regarding the FIR of the 8 accused in this particular matter. And that's why it is being said, as per the sources, that Anil Mishra and Champat Rai could be replaced by these two. And that's why Govindgiri is having a meeting right over there ahead of the big meeting at 3 p.m. in Ayodhya. With cameraman Gaurav Gupta, Samarth Srivastav for India Today.
4: 3 baje aaj mandir parisar mein trust ki baithak hogi. Sabhi 14 trustiyon ko nimantran gaya hai. मैं उम्मीद है सभी लोग भाग गए।
5: तो गोविंद महाराज ने सबको आमंत्रित किया है।
4: हाँ जी।
6: अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था। मैं फिर आज दोहराता हूँ कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को पूछना चाहिए उन लोगों से कि बाबरी मस्जिद का जो चंदा एकत्र हुआ था वो कहाँ चला गया, जो हमारे अखबारों में समय समय पर इस प्रकार की खबरें आती हैं कि मदरसों के लिए जो फंडिंग हो रही है कहां से हो रही है, जो वक्त में घोटाले हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं जवान सिले हुई समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सनातन संस्कृत को बदनाम करने की साजिश करने का पूरी तरह से जो इन्होंने प्रयास किया है उसको हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। और
7: कुछ हमारे ऐसे दलों के नेता जिनमें कभी राम के प्रति आस्था रही नहीं, तो मैं कहूँगा कि पहले तो राम भक्त बने, राम के प्रति आस्था प्रकट करें। जिन्होंने राम मंदिर का हमेशा विरोध किया है, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया है, राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया है, कभी राम मंदिर जाने का काम भी नहीं किया, तो मैं कहूँगा कि भगवान राम के दर्शन करें और सद्बुद्धि भगवान राम देंगे। और मैं निश्चित कह सकता हूँ कि जिस तरह से SIT ने जाँच किया है और उसमें जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा।
8: जो देश के करोड़ों लोगों की जो आस्था को चोट पहुंची है, जो अपने गाढ़े पसीने और कमाई का पैसा उन्होंने वहां वो किया और वो वहां से पता चला कि वो वहां से फुर्द हो गया, तो इससे जो है वो देश के लोगों को बहुत उनके जज्बात आहत हुए हैं।
9: अरे चौकीदार कुर चोर है, वो क्या पनिशमेंट देगा? एंड हु आर दे टू सीक पनिशमेंट? व्हाई डिड दे वेट फॉर सो लॉन्ग? उनके भाई साहब भाई लोग ही किए ना ये सब, as if they don't know. In fact, I'm 100% sure some funds must have gone to them also.
10: मैं समझता हूँ कि भारत एक भावनाओं से परिपूर्ण देश है और इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्रकार प्रतिकार या जिस प्रकार प्रतिरोध नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हमने कहा कि पूरी सरकार, जैसे पूरी सरकारी तंत्र है भारतीय जनता पार्टी की, पूरी तंत्र है वो किसी न किसी प्रकार लोगों को बचा रही है और जिस प्रकार सप्रेस भी कर रही है। हम तो ये कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है उनके द्वारा पोषित भी है, उनके द्वारा संरक्षित है, और निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार PMO का जो पूर्व में जो पदाधिकारी वो है या फिर ज्ञानेश कुमार है खुद कंट्रोवर्शियल है, ऐसे सारे लोग जो ट्रस्टी बने हुए हैं, तो बहुत ज्यादा हमें नहीं लगता है कि आज भी जितनी चोरियां हुई है हमें न्याय मिल पाएगा या हमारी आस्था हमें जो है वो यथावत रह पाएगा, हमें संदेह है।
0: एंड चंपत्स आस्था इज क्लियरली सर्टेन नाउ इज व्हाट इट अपीयर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। द ट्रस्ट इज गोइंग टू बी वोटिंग ऑन चंपत्स रेजिग्नेशन। वेल एक्चुअली 2/3 मेजॉरिटी इज नीडेड फॉर द ouster. Champat may get to present his side, say what happened, whether he knew, whether he didn't know, maybe served a notice as well before a final call is taken. Big indications that the resignation could be accepted. Outcome could reshape the trust's leadership. Decision is going to signal the trust stand on accountability. The move seen as crucial to restoring the confidence of devotees. SIT findings could influence the trust's move here. A striking example of technology being used to cheat the system. Gurugram's Municipal Corporation has exposed an alleged AI and GPS-based fraud involving 4 contract employees. According to the civic body, one sanitation worker allegedly used artificial intelligence to generate fake work completed photographs instead of even going to the complaint site. Another employee used GPS spoofing to mark attendance in Gurugram while reportedly remaining in Jhajjar. The civic body says its digital monitoring systems detected the discrepancies and were later confirmed through physical verification. 2 other employees from the property tax department have been dismissed for alleged violations of standard operating procedures. The municipal corporation says the action sends a strong message that while technology can improve governance, misuse of artificial intelligence and digital tools will leave a trail, and that trail can cause the cheats their job. AI-powered smart fakery busted in Gurugram. AI GPS spoofing exposed in civic fraud. Fake photos, fake location, real sackings. AI-generated work done photos now stand exposed. A GPS spoofing trick fails digital audit. Smart fraud meets smarter surveillance. Civic body's digital watchdog exposes this tech fraud. 4 contract staff have been sacked over the AI GPS scam. From AI images to GPS spoofing, digital deceit has been busted. No field visit, only AI. Civic fraud stands exposed. Fake clean up there and real crackdown. Viewers, these are AI made pictures. Digital forensics exposing the lies here. Digital fraudsters outsmarted by smart governance.

0: Mumbai-Pune Expressway, and this is the missing link that had been inaugurated with much fanfare about 2 months ago. But right here, you can see how this entire landslide has happened around Monday, 4 o'clock in the morning. And since then, amidst heavy rainfall, gusty wind that you can see here, they're trying to restore this entire way. The traffic that had entered this place, that was taken out from the older route, from the older route itself, regular traffic is going on between Pune to Mumbai. This is the portion of the road between Pune to Mumbai where this entire landslide has happened. And right here you can see entire work, according to the contractor here, will take about 3 to 4 hours. Around 3 hours is maximum that they are saying that they will be able to restore this work and put it back for use for the vehicular traffic to move. But right here you can see how the entire, during the landslide, the entire concrete work, this entire slab which was on top of this tunnel, that collapsed right here. And thankfully there was not much of traffic around that time, or else it could have led to a much bigger mishap. With cameraman Mahesh More in Mumbai, Vidya for India Today.
1: ये जो लैंडस्लाइड की घटना हुई उसकी तुरंत जानकारी मिली और उस जानकारी के आधार पर दो ट्रेनें जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बेंगलोर के लिए जा रही थी और दौंड से ग्वालियर के लिए जा रही थी, इन दोनों ट्रेनों को सुरक्षित वापस लौटाया गया। इसमें ना ट्रेन को ना यात्रियों को किसी प्रकार की हानि पहुंची। इसके बाद में हम लोगों ने अभी तक मुख्यत्वे करके मुंबई और पूना के बीच में चलने वाली 14 जो ट्रेनें हैं उनका कैंसिलेशन किया है। इनके अलावा मुंबई से सोलापुर चलने वाली एक ट्रेन और मुंबई से धुले चलने वाली ट्रेन, इन ट्रेनों का भी कैंसिलेशन किया गया है। टोटल 18 ट्रेनों का कैंसिलेशन अब तक किया गया है।
2: सर, जो दूर दराज की ट्रेनें हैं जिन पर इफेक्ट हुआ है, जैसे मुंबई पुणे, मुंबई सोलापुर, ये कब तक रिस्टोर हो सकती है, कितना समय लगेगा?
1: जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो रिस्टोरेशन का काम है वो युद्ध स्तर पर जारी है, किंतु वहां पे अभी भी तेज बारिश और उसी के साथ साथ में हवाएं जो है वो चल रही है, जिसके चलते रिस्टोरेशन के काम में स्पीड अभी तक नहीं मिल पा रही है। हमें उम्मीद है अगले 2-3 घंटे में हम लोग इसके लिए एक पुख्ता टाइमलाइन दे पाएंगे।
3: And I'm going straight to my colleague Vidya for the very latest on that story. She sent us that report earlier. Vidya, how is the situation as of now? This partial restoration of services? What more can you tell us?
4: Well, I'm at the missing link where the entire landslide had taken place earlier on 4 in the morning. And even now, the restoration work is still going on. In fact, the restoration work will take a couple of hours more, is what we have been told, before the missing link. Remember, this missing link on the Mumbai-Pune Expressway was inaugurated by the Chief Minister and the Deputy Chief Minister with much fanfare around 2 months ago. And right here, the very entrance of, if you're coming in from Pune, going towards Mumbai, at the end of the tunnel, this entire, landslide has taken place, because of which you can see the entire traffic on the expressway of this portion has been stopped. The expressway is being used, the older one, that is still being used for people to reach Mumbai, and certainly that is creating quite a lot of traffic jam. The traffic movement on that route is slightly slow.
3: Right. Be with us. Coming back to you in a moment from now, Vidya getting us those details. The Chief Minister has taken stock. Let's take a listen.
5: जिके अतिवृष्टि चाललेली आहे, काही भागामध्ये पूरजन्य परिस्थिती आहे, मोठ्या प्रमाणात वारा जो आहे त्याचे देखील इव्हेंट्स होत आहेत, त्यामुळे दरड कोसळणं किंवा मोठ्या प्रमाणात वॉटर लॉगिंग होणं असेही अनेक प्रकार आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत। या संदर्भात आत्ताच आपला जो आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आहे, या ठिकाणी राज्यातले सगळे प्रमुख अधिकारी आणि सर्व जिल्ह्यातले जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन, विभाग प्रशासन या सर्वांसोबत आम्ही चर्चा केलेली आहे। जी काही माहिती आहे ती माहिती त्यांना ऑलरेडी शेअर केली आहे, त्यानुसार त्यांनी काय प्लॅन तयार केलेले आहेत या संदर्भातली त्यांच्याकडनं माहिती जाणून घेतली आहे। त्यांच्या काही अडचणी असतील तर त्या समजून घेतलेल्या आहेत। विशेषतः मुंबईमध्ये आज 3 वाजतापासून हायटाईड आहे, भरती येणार आहे, आणि

0: And more news coming. As far as the Chanda Chori in the Ram Mandir is concerned, there will be no CBI probe. High Court has declined the petition seeking CBI probe. I'm going to go straight across to my colleague Ashish for more on that. Ashish, court ka is samay ye kehna hai ki is tarike ka ek bhi aur mamla Supreme Court mein pending hai. Uttar Pradesh ki sarkar ka kya kehna hai is samay?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो याचिका थी वो दाखिल की गई थी सीबीआई की जांच मांग वाली ये जो याचिका है, और इसमें साफ कहा गया था कि जो जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट है उसकी सीबीआई जांच हो, जो चंदा चोरी हो रही है और उसको लेकर सीबीआई को लेकर रिकमेंड करने की बात कही गई थी, तो उस पर आज सुनवाई थी, जिस पर कोर्ट ने साफ कहा है कि ऑलरेडी ऐसी एक जो याचिका है इस तरीके की जो है वो कन्वर्सेशन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये अब दोबारा यहाँ पर हाई कोर्ट में नहीं सुन सकते हैं, और इसी को लेकर ये याचिका खारिज की गई है। और सरकार की ओर से दलील भी दी गई थी कि इस विषय से जुड़ी याचिका पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में है, तो फिर कैसे दोबारा यहाँ पर भी हो सकती है, तो ये दलील सरकार की तरफ से दी गई, जिसमें एजी विनोद शाही और सीएससी शैलेंद्र सिंह अदालत में अपना ये पक्ष रखा सरकार की तरफ से, और जिसकी वजह से ये खारिज हुई है। और इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने कहा था कि इस मामले पर चूंकि चंदा चोरी का मामला बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट की बात हो रही है, तो पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच हो, हालांकि आज सुनवाई होनी थी लेकिन इस पूरे मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब कहीं ना कहीं इसको प्रोसीड कर दिया। तो इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से ही कहा गया कि ऑलरेडी इसकी जो खड़े थे अधिवक्ता उन्होंने कहा कि इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के मामले हैं पेंडिंग और जिसको लेकर वहां पर सुनवाई चल रही है, तो हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। अब जो झटका लगा है कह सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता है उन्होंने साफ कहा था कि याचिका पे सुनवाई होनी चाहिए थी, होने के बाद सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन अब सुनवाई हुई है लेकिन जांच कहीं ना कहीं कोर्ट ने पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है।
0: शुक्रिया मिस्टर जुड़ने के लिए आशीष श्रीवास्तव। दे गेटिंग आज द वेरी लेटेस्ट ऑन दैट स्टोरी। देयर विल बी नो सीबीआई प्रोब इन दिस एंटायर मैटर। रिमेंबर द स्टेट गवर्नमेंट हैज आस्क्ड फॉर अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू लुक इन टू द केस ऑफ द डोनेशन थेफ्ट एट द राम टेम्पल। We're shifting focus now. Diljit Dosanjh's film Satluj has been taken off the OTT platform Zee5 in India. The hard-hitting film was removed just 2 days after its digital premiere. Satluj did not get a theatrical release in India and was released directly on the OTT platform after the Central Board of Film Certification, or the CBFC, reportedly sought more than 120 cuts. The project, originally titled Punjab 95, is based on the life of human rights activist Jaswant Singh Khalra. The film revolves around the struggle of the activist to unearth alleged extrajudicial killings, and militancy was at its peak in Punjab in the 1990s. Diljit Dosanjh, on his part, has planned the removal of his film from Zee5, mounting a full-throated defense of his controversial film.
2: But I don't know if I was going to say this, but I did डे वन तो ही सगा इसी करके फिल्म दी प्रमोशन भी नहीं कर सके, इसी करके बिना दसे किसी नु फिल्म नु रिलीज किया। जे दस के रिलीज करते दो दिन पहला प्रमोट करते फिर नहीं सी लगनी, पर हुण मैनू इस गल दी तसल्ली है कि फिल्म जिहड़ी घर घर पहुंच चुकी है, तुहाडे कोल आ फिल्म, लोगों ने फिल्म डाउनलोड भी कर ली है, ते अज जिहड़े हुण नवा यूथ आ ओह फिल्म दी गल भी कर रहा है। और मैं एक वीडियो देखी, बहुत ही प्यारी वीडियो, कल मैं अज सवेरे उठ के देखी कि गुरुद्वारा साहब दे विच फिल्म नु दिखाया भी जा रहा है। सो हुण मैनू इस गल दी तसल्ली है कि फिल्म तुहाडे तक पहुंच गई है, जिन्ना काम सारा ने मेहनत जिहड़ी कीती सी उहनां दा ओह सारी दी मेहनत दा तुहाडे तक पहुंचना बहुत जरूरी सी, ते ओह तुहाडे तक पहुंच चुकी है। इस गल दी मैनू बहुत तसल्ली है, शुक्र आ महाराज दा, मैं सारिआं दा धन्नवाद करदा ते सारी टीम नू इस गल दी मुबारकबाद कि जिहड़ा साडा काम है ओह जो असीं कहना चाहुंदे सी और जिद्दां असीं कहना चाहुंदे सी उदां ही ओह लोकां कोले पहुंच चुका है। तो तुहाडे कोल हुण फिल्म है ते तुहाडी अपनी फिल्म है, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
0: Well, you can find the report and much more on our website. That's indiatoday.in. You can download the app as well. It's a wrap on this edition. On the other side, all eyes on Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust key meeting. Sources say the trust is likely to show doors to Champak Rai and choose his successor. That story and much more coming up on the other side.

0: राम के नाम पर तो वोट लिया, पर राम का नाम बदनाम हो रहा है। अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी खुलासे हुए हैं कि वहां भी चंदा चोरी हुआ है। ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में। और चंदा चोरी तो बिल्कुल साफ हुआ है, हजारों करोड़ का चंदा चोरी हुआ है उत्तर प्रदेश में, और अंदर से ही ये सब जानकारी आ रही है।
1: अगर वो आरएसएस और वीएचपी को जिम्मेवार ठहरा रहे लूट में, तो उनको एसआईटी ने समन करना चाहिए, उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये किस आधार पे कहा। ये कहने का क्या कारण हुआ कि आरएसएस ने या वीएचपी ने इस लूट में कोई हिस्सा लिया है? और अगर ये बयान सिरे से झूठा है तो सनसनीखेज और असंतोष और गुस्सा भड़काने वाला बयान है, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उनको भी दंड मिलना चाहिए।

0: Key meeting of the Ram Mandir Trust to begin in just a short while. Stay tuned here on India Today. We are giving you a wide coverage of what precisely is happening in Ayodhya and why this is so crucial. It is about devotees in millions, not just in India, but globally, who want to be assured that the top of the trust members across political spectrum will ensure that the devotees' faith and their donations will be taken care of, and this theft cannot be accepted at all. Fate of Champat Rai will be decided. He's not a formal accused, but it's the moral obligation, the responsibility on his. That's Amar Srivastav. He's trying to tell us the latest about who's arriving, because from the latest, what he's shown to us, and I'll go across to him in just a short while, Govind Dev Giri is about to arrive. Samar continues to be with us. Samar, tell us about who all are there, who have arrived already, who are leaving.
1: Well, Pooja, I must tell you that almost all the members have reached for that particular meeting. But the point is out here that the police security is exceeding out here, because what we are getting, that Ritya Gopal Das, the main person, the point person of the Temple Trust, is about to leave from here. As you can see, the heavy police security, any time from now, Ritya Gopal Das will be leaving from here. And that's why the security has been beefed up. The most likely pictures will be of Ritya Gopal Das. Back to you. Go with the visual.
0: Sir, Samar Srivastav showing us the details. That's the latest. Another trust member who's leaving. Samar, keep telling us who's leaving, who's arrived, how many members are likely to be, because I'm also interested in the quorum. There will have to be 2/3 majority.
1: नृत्य गोपाल दास को तस्वीरों में देखें आपकी किस तरीके से नृत्य गोपाल दास सबसे बड़े चेहरे जो हैं टेंपल ट्रस्ट के अध्यक्ष वो यहां से जा रहे हैं और उनकी गाड़ी यहां से सीधे निकल गई है बैठक के लिए। ये बड़ी अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। नृत्य गोपाल दास यानी कि टेंपल ट्रस्ट के अध्यक्ष, पहले उत्तराधिकारी कमल नयन दास और उसके बाद नृत्य गोपाल दास अब बैठक के लिए निकल चुके हैं अपनी छोटी छावनी से। बड़ी अपडेट ये है, एक पत्र उनके द्वारा लिखा गया और उसके बाद अब नृत्य गोपाल दास यहाँ से निकले। तो कुल मिलाकर जो बैठक का नेतृत्व क्षमता होती है वो अध्यक्ष की होती है, और उस लिहाज से अभी बैठक और अहम है। अब देखना ये है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्र का इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं, लेकिन नृत्य गोपाल दास की मौजूदगी टेम्पल ट्रस्ट के बड़ी बैठक में, वो भी उनके पत्र के बाद, कई संदेश देती है। अब इन संदेशों के मायने क्या हैं, कुछ क्षणों में साफ होंगे। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: That's Samar Srivastav telling us about who all are leaving from the location. So in the next 5 to 10 minutes, I believe that the meeting is set to begin. Remember, why is this important? There have not just been allegations of theft, there have been devotees who have been concerned by the allegations that have come in and have come forth to claim that some of their donations allegedly also has been missing, to which the trust has given clarification. One of them was former Home Secretary S. Lakshmi Narayanan, who said 5 crore rupees worth of gold-plated Ramcharitmanas went missing, to which the trust has clarified that it has been kept safely in a vault. Samarth Srivastav with all the latest. Samarth, as you continue to stay with us, just a quick background I want to bring to the viewer. Who's in the Ram Temple Trust? So who are going to be there? Mahant Nritya Gopal Das, he's the chairperson. Champat Rai, who was the general secretary until now, and official resignation is going to be accepted. K. Parsaran, the founding trustee. Swami Govind Dev Giri, who's been the treasurer, he has said he's going to be answering most of the questions. Nripendra Misra has been a popular name. He's been part of the Ram Temple Construction Committee as a chairperson, primarily involved with the construction part of it. So the names there on your screen, one by one, of the individuals who've been associated with the trust, who will be present and will need a 2/3 majority. Shankaracharya Swami Vasudevanand Saraswati is also a trustee. He'll be there. Madhavacharya Swami Vishwa Prasannarita trustee also will be there. Anil Mishra, again, like Champat Rai, is most likely to step down, will be asked with a 2/3 majority, can leave his position, can also be asked to let go of the lifetime membership. Vasudevanand Saraswati also is a trustee. He's going to be there. Mahant Dinendra Das, Krishna Mohan is going to be there as well. We're also, we believe that there are going to be IAS officers, the district magistrate, also as part of the team, are going to be present in that meeting. Samar Srivastav continues to be with us. But it's going to be an important day, ladies and gentlemen. One, it is about posturing. It's about optics as much to showcase that the trust in itself wants to come forth, ensure that there's an independent decision taken. Because the one question that everyone wants to know is the five accused who've been arrested. Is it just about them? Is it just accounting staff? Is it just a small fish who's been arrested? Or does the nexus go till the top? That's what the trust will have to really make it clear to devotees watching. Samarth Srivastav continues to be with us. Samarth, isn't it? I think the responsibility of the trust is also about ensuring that the small fish have been arrested, but the innocent. Go ahead, tell us who's leaving now.
1: नृत्य गोपाल दास को तस्वीरों में देखें आपकी किस तरीके से नृत्य गोपाल दास सबसे बड़े चेहरे जो हैं टेंपल ट्रस्ट के अध्यक्ष वो यहां से जा रहे हैं और उनकी गाड़ी यहां से सीधे निकल गई है बैठक के लिए। ये बड़ी अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। नृत्य गोपाल दास यानी कि टेंपल ट्रस्ट के अध्यक्ष, पहले उत्तराधिकारी कमल नयन दास और उसके बाद नृत्य गोपाल दास अब बैठक के लिए निकल चुके हैं अपनी छोटी छावनी से। बड़ी अपडेट ये है, एक पत्र उनके द्वारा लिखा गया और उसके बाद अब नृत्य गोपाल दास यहां से निकले हैं। तो कुल मिलाकर जो बैठक का नेतृत्व क्षमता होती है वो अध्यक्ष की होती है और उस लिहाज से अब ये बैठक और अहम है। अब देखना ये है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्र का इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं, लेकिन नृत्य गोपाल दास की मौजूदगी टेम्पल ट्रस्ट के बड़ी बैठक में, वो भी उनके पत्र के बाद, कई संदेश देती है। अब इन संदेशों के मायने क्या हैं, कुछ क्षणों में साफ होंगे। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या।
0: So that's what Samar Srivastav is bringing to us. All the senior most leaders, the saints and seers who've already left. Of course, the distance is not far too much. So in the next few minutes, they'll be there at the location of the meeting. Now, the venue is going to be very crucial. They are going to decide, one, what to do with Champat Rai. According to our sources, Champat Rai is on his way out. As a general secretary, possibly lifetime membership also is going to go away. Now, if you're wondering why him, if there are no direct allegations against him, it's because he was at the authority where that supervision was important. Also, at least two of the accused who've been arrested were directly known to Champat Rai and were his close associates. And that is why all the eyes will be on what his fate is going to be. It's held inside the premises of the Ram Mandir in Ayodhya, where the trust meeting is scheduled to begin in just a short while. Exit of both office bearers, Anil Mishra, Champat Rai, will be where the fate will be decided. Most likely, according to our sources, they're on their way out. The resignations will have to be accepted, but they will also be given a chance to present their view because the charges are against them, or at least believed to be. 2/3 majority is required for their ouster. So the quorum will have to be justified about who all are attending. That's why we are telling you who all have left, who have arrived. Let's assume that Champat Rai with 2/3 majority is removed. What happens then? You need a vacancy to be filled in. Bajrang Lal Bagra, the International General Secretary of Vishwa Hindu Parishad, according to our sources, is emerging as the front runner and has enough administrative experience. Look at that. Most seers and saints leaving from their ashrams, from where they stay, from their accommodations toward the Ram temple. And they clearly realize that there's a lot of anger, outrage, confusion, suspicion among the devotees, even the ones who've never visited the Ram temple. But because it's been a generational long fight to finally have Pran Pratishtha at the Ram temple, Samarth Srivastav is telling us why the trust meeting is also going to be very important. Remember when Santosh is joining me now for the latest on that. Santosh, aap abhi kahan par hain? Kitni der mein hum maan sakte hain ki meeting start hogi? Aur kitni crucial ye meeting hai? Kya ye ek tarah se sirf photo opportunity hai? Ya is meeting mein humko ek assurance milega ki jo galat hai unko unke against action hoga?
2: देखिए, ये फोटो अपॉर्चुनिटी तो नहीं ही है, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि ये इस पर हम निर्णय आर पार का लेना ही पड़ेगा। और मैं अपनी बता दूं, मैं राम मंदिर का जो पिछला गेट है, एक जगत गुरु रामानुजाचार्य द्वार, ये गेट है रामानुजाचार्य द्वार, और इसी गेट से डीएम अयोध्या शशांक त्रिपाठी पहुँचे हैं। ये वो गेट है जो तीर्थ क्षेत्र भवन के, यानी कि राम मंदिर ट्रस्ट का जो दफ्तर है उसके ठीक सबसे करीब में है, और यहाँ से ही तमाम वीवीआईपीज अंदर जाते रहे हैं। और ये रामानुजाचार्य गेट है, यहाँ से भी डीएम अयोध्या समेत तमाम लोग गए हैं। 3 बजे से बैठक शुरू होनी है और इस बैठक के जरिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के दिए हुए इस्तीफे पर फैसला। इस्तीफा हो जाएगा, इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं होगा, इसके साथ ये मंजूर हो जाएगा तो चंपत राय का क्या होगा, क्या वो ट्रस्ट में बने रहेंगे एज ए सदस्य। अनिल मिश्रा ट्रस्टी हैं, अगर वो ट्रस्टी उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तो ट्रस्ट से बाहर होंगे। और इसके साथ ही जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, जो ट्रस्ट के रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, वो क्या आज ही डिसाइड हो जाएगी या फिर बाद में डिसाइड होगी। इसके अलावा अगर चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो पहले से ही इस ट्रस्ट में एक सदस्य का, एक राजा जो मेंबर थे उनके निधन के बाद से एक पोस्ट खाली थी, तब 3 पोस्ट नई हो जाएंगी क्रिएट, तो उन पर चयन होना है, तो एक बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन आज राम मंदिर ट्रस्ट की जो बैठक है, इस बैठक में तमाम लोग जो पदाधिकारी थे, जो ट्रस्टीज थे, वो शामिल होने के लिए अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम के जरिए भी बैठेंगे, तो कहा जा सकता है कि आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, जो चंपत राय और अनिल मिश्रा के राम मंदिर ट्रस्ट के भविष्य को तय करेगी कि वो ट्रस्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनका इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं होगा। जी
0: संतोष, हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग टू द व्यूअर, इवेंचुअली रिमेंबर इट्स नॉट जस्ट अबाउट हु विल बी आस्क्ड टू लीव बट आल्सो अबाउट व्हाट द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फ्रॉम द ट्रस्ट, हु विल बी इंट्रस्टेड विद दैट पावरफुल पोजीशन एज जनरल सेक्रेटरी टू बी एबल टू एंश्योर नन ऑफ दिस happens ever again. Live visuals on your screen from Ayodhya. Now, to those who may not know, this is the front gate, and from here you enter into the premises, which is of course also a little while, at least about a kilometer from here where the devotees walk to, but it's of course the gates are locked, checks are being done, the police personnel here also are deployed, of course only with the verified identities will they be allowed to enter. We are told that any of those charges or doubts that are coming in from the devotees, for example, a former IAS officer, there were some Sindhi businessmen who had also said their donation seemed to be missing. All of that has been clarified by the trust, saying it's safely kept in the vault in the temple. Because remember, there would be many devotees who will start to question if their donation has also gone missing. For now, it's the responsibility of the trust to ensure one by one, they allay any fear and concerns. I want to bring in Santosh here. Santosh, Ayodhya mein kis tarah ka mahol hai? Kya aap apne aaspaas dekhte hain ki kafi police force maujood hai? Kya jo trust ke members hain, kya unhone abhi tak kuch kaha hai meeting se pehle?
2: मीटिंग से पहले कोई भी ट्रस्टी बात नहीं कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अयोध्या वालों के लिए ये आम सा दिन है, जो भी हलचल है वो राम मंदिर के अंदर है, जो भी हलचल है सियासत के गलियारों में है, जो भी हलचल है वो खबरों में है, क्या ट्रस्ट की बैठक है। हाँ, निगाहें सभी की हैं, सभी आदमी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आज इस ट्रस्ट की बैठक में निर्णय क्या होंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से जो राम मंदिर का जो SOP बनाया गया है वो एज इट इज़ है, पहले की तरह बस स्तंभन कर दिया गया है, जो भी व्यक्ति हैं उनकी स्क्रूटनी पहले से की जाती है। ये चूंकि गेट VIP एंट्रेंस का भी गेट है और तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, तीर्थ जो ट्रस्ट है उसके सबसे नज़दीक है, तो तमाम जो लोग थे जो पहले भी जो ट्रस्ट में आते थे वो सीधे यहाँ से एंटर करते थे, तो आज सिक्योरिटी रोज़ की तरह है, पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, लेकिन हलचल और निगाहें सभी की आज की इस महत्वपूर्ण बैठक पर हैं कि इस बैठक से राम मंदिर ट्रस्ट का निर्णय होगा कि इस ट्रस्ट में अब आगे कामकाज कैसे होगा। क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के जाने के बाद कोई नए चेहरे आएंगे, कोई ब्यूरोक्रेट होगा, उत्तर प्रदेश से उसका नाता होगा, अयोध्या से नाता होगा, या फिर कोई बाहरी प्रोफेशनल व्यक्ति आएगा जिसको अपने काम की दक्षता होगी, प्रोफेशनल होगा, जिसके पास एक्सपर्टीज होगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिला, जिसकी वजह से पूरा इशू खड़ा हुआ, वो था सुपरविजन का। ना तो सुपरवाइज हो पा रहा था, ना ही मैनेजमेंट हो पा रहा था, चाहे वो फंड मैनेजमेंट की बात हो, चोरी हो रही थी, इतना बड़ा फंड आ रहा था, इतना कैश फ्लो था कि उस कैश फ्लो पर कोई निगरानी नहीं थी। और यही वजह थी कि जो 8 एक्यूज जेल गए उनमें से 6 के पास से 80 लाख से अधिक की रकम मिली, तो वो धड़ल्ले से चोरी कर रहे थे, बेधड़क होकर के कैश ले जा रहे थे। यानी कि जो सर्विलेंस होना चाहिए, जो सिक्योरिटी होना चाहिए, जो मॉनिटरिंग होना चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। अब उसको कैसे स्ट्रेंथन अप करना है, कैसे उसके लिए SOP बनना है, ये तमाम चीजें हैं जो अब ट्रस्ट को
0: And I'm quoting from sources that 6 to 8 lakh rupees, possibly daily, as a charge is coming in, could have been smuggled out. If that is true, and we'll wait for the investigators to prove it, if that is true, it's absolutely horrific. That's the word I'm using, that someone would indulge in a crime like that in a place like Ram Temple. Samarth Srivastav also continues to be with us. Samarth, you're constantly telling us all the top seers and leaders who have left. At what time are we expecting the meeting to begin? Have you seen Champat Rai yet around you anywhere, or is he being discreet?
3: See, Pooja, as per the current info, there is no Champat Rai or Anil Mishra seen in that particular meeting. And the meeting will start once Nritya Gopal Das, the top face of the Temple Trust, will reach there. And he will be leading that particular meeting. His counterpart, Kamal Nayan Das, is also right over there. So the treasurer, Govind Giri, has also reached. And many top seeds of Ayodhya, especially the trust members, have reached at that particular place where the big meeting is happening. And that the absence of Anil Mishra and Champat Rai clearly hints that the resignation will be okayed, and there could be the new induction of new faces, be it Bajrang Lal or Krishna Das or Neeraj from Bajrang Dal. These three names are making the rounds out of it. Krishna Das and Bajrang Lal's name is making the rounds for that particular post of Champat Rai. So it's going to be worth seeing. At the end of the day, trust finally wants an honest name, a name who can take the trust forward, a name who can bring back that particular loss of that particular thing, the devotion of Lord Sri Ram, devotees especially, who are now questioning this particular thing after their donations were being, in a way, got out in theft. So these are the big questions leveled up, and that's why trust needs to answer, and that's the best way for the trust to answer, by giving some landmark decisions and accepting some resignations and getting new faces right over there who have a clear image in the trust. Back to you.
0: All right. So is the clock ticking for Champat Rai? Is he going to be on his way out? And has he got that feeler already? Santosh and Samarth continue to be reporting for us. I understand it's not an easy weather to be reporting from in Ayodhya, and both our reporters are doing a good job of it. But what exactly are we expecting at the trust meeting? The trust is primarily while to discuss and know what is the view of Champat Rai and of Anil Mishra, but the vote will be also on their resignations. Why is that necessary and what is the protocol? It's a quorum, which means there will be a 2/3 majority that is needed for the ouster. So there will have to be all the representatives who will have to be present who are going to vote. There will be, to present his side, an opportunity given to both the individuals, especially to Champat Rai, General Secretary. There could be possibly, if not an immediate resignation acceptance, but a notice could be served before a final call is taken. But the indications are telling India Today that in all likelihood, that resignation is going to be accepted. But that outcome will then reshape the trust leadership. The decision to signal the trust stand on accountability. The trust cannot simply say that 5 people have been accused and they have been arrested. It has to go all the way up to have a certain accountability set in. And therefore, one of the reasons, ladies and gentlemen, this meeting is being organized. These decisions are being taken because it's to restore the confidence of you and me, of the devotees of Ram Temple, to be able to put forth a certain view that it could only be about 5 to 6 individuals, possibly 10, but no more. SIT findings could influence the move of the trust. All of this is going to be very crucial because across the world, Ram devotees are watching this. Santosh, hame yaad hai jab pran pratishtha hui thi, to kis tarah se na sirf Bharat desh se, par dusre deshon se bhi donations aaye the, gifts aaye the. Ek tarah se ye aisa lag raha tha jaise pure vishv mein ye celebration ho rahi hai. To aapko lagta hai ki ye baat bhi trust ki samajh mein hai ki kahin na kahin pura vishv ya jo jo desh involved the hamare Ram Temple ke pran pratishtha mein, wo bhi dekh rahe honge?
2: देखिए, भगवान राम सिर्फ हिंदू के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, भगवान राम समस्त मानव जाति के। उन्होंने एक कहा जाए कि जिंदगी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है कि हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू लिव मैनर्ड लाइफ, ये उन्होंने दुनिया को समझाया कि मर्यादा में रह के कैसे जीवन को जीना। और यही वजह थी कि जब भगवान का दिव्य अद्भुत राम मंदिर बना तो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि देश और दुनिया के तमाम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर डोनेशन दिया और अपनी श्रद्धा के साथ दिया, जिसके पास जो था उसने डोनेशन दिया। तमाम ऐसी तस्वीरें हम बीते कई सालों से देखते आए हैं कि तमाम महिलाएं आई, परिवार से बुजुर्ग जो महिलाएं आई वो भावविवल हो गई, उन्होंने इमोशंस में आकर के जब भगवान राम के दर्शन देखे, दर्शन किए तो उन्होंने अपनी ज्वेलरी उतार करके दे दी और ज्वेलरी उतार करके डोनेशन बॉक्स में डाल दिया। तो वो एक्सट्रीम था इमोशंस का, डिवोशंस का। और उसी एक्सट्रीम और डिवोशन में जो लोग अपना डोनेशन कर रहे थे, उस डोनेशन से कैश चोरी हो रहा था, उस डोनेशन बॉक्स से ज्वेलरी भी चोरी हो रही थी। तो ये एक बड़ा सवाल था उन लोगों के लिए भी जो अपने भगवान राम के मंदिर के लिए सदियों का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अपनी कहानियां सुनी थी कि कैसे उनके लोगों ने संघर्ष किया, कैसे भगवान राम के अस्तित्व को नकारा गया, क्या क्या पेचीदगियाँ आई, और उसके बाद जब दिव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ और तो उनके भावनाएं उमड़ी, तमाम लोग यहाँ पर आए और उसके बाद देश और दुनिया के ही नहीं तमाम लोग आए, डोनेशन आया
0: है।
2: और
0: उस डोनेशन इसीलिए जरूरी है कि ये अश्योरेंस बना रहे ट्रस्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि इस तरह की चोरी की अगर एलिगेशन है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आई अप्रिशिएट संतोष एंड समर्थ, कंटिन्यू टू बी विद अस। This is going to be our top story, ladies and gentlemen, but I have to also slightly shift focus because it's our regular Business Today show as well to tell you how the markets have been performing. So going across to my colleague Sakshi on that, a little bit on what's happening in the business sector.
4: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
5: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight. SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
6: Presented by National Stock Exchange.
7: ICFA University, building tomorrow's leaders today.

0: राम के नाम पर तो वोट लिया, पर राम का नाम बदनाम हो रहा है। अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी खुलासे हुए हैं कि वहां भी चंदा चोरी हुआ है। ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में। और चंदा चोरी तो बिल्कुल साफ हुआ है, हजारों करोड़ का चंदा चोरी हुआ है उत्तर प्रदेश में, और अंदर से ही ये सब जानकारी आ रही है।
1: अगर वो आरएसएस और वीएचपी को जिम्मेवार ठहरा रहे लूट में, तो उनको एसआईटी ने समन करना चाहिए, उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये किस आधार पे कहा, ये कहने का क्या कारण हुआ कि आरएसएस ने या वीएचपी ने इस लूट में कोई हिस्सा लिया है। और अगर ये बयान सिरे से झूठा है तो सनसनीखेज और असंतोष और गुस्सा भड़काने वाला बयान है, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उनको भी दंड मिलना चाहिए।

0: screen, remember, while is the successor whose face is coming forth. I want to take you through the two names that are coming in, Anil Mishra and Champat Rai. Why are these two names important? Because Anil Mishra may have a consensus from the trust to be able to ask him to leave. And what we are picking up is reports indicating that a general agreement was reached regarding the proposal for his removal. The final decision will be taken in accordance with the trust's formal procedure. A consensus has been reached during the trust meeting to remove him. Ashish Srivastav joining me. Ashish, in fact, is getting all the inside information. I have to say, Ashish, you have very good sources when it comes to the trust and the information. Now, you tell us that when it's talking about consensus, do we believe this? It seems that all the trust members will say that Anil Mishra should step down.
1: बिल्कुल, देखिए जो अंदर चर्चा चल रही है उस पर पहले बिंदुवार चर्चा हुई। कृष्ण मोहन ने जो पहले वहां पर हैं और गोविंद गिरी ने अलग अलग ये चर्चा की और ये कहने लगे कि जो FIR दर्ज हुई है उसमें कई लूप होल्स थे, यानी कि शुरुआत से ही, और पहली बार जिम्मेदारी भी तय करने की बात कही गई थी कि इनकी जिम्मेदारी भी थी लेकिन उसकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। अब जो प्रस्ताव तैयार हुआ है जिसमें चर्चा चल रही है इस्तीफे की, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसको एक्सेप्ट करना है, तो उसमें पहली बात तो गोपाल राव चूंकि इसमें नहीं थे तो उनको इससे दूर रखा गया है। बचे अब अनिल मिश्रा और चंपत राय। तो अनिल चंपत राय और अनिल मिश्रा, अनिल मिश्रा के ऊपर चर्चा ये हो रही है कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया है अब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। उसमें चूंकि गोविंद गिरी और इसको लेकर कृष्णदास सभी जब अपनी अपनी राय रख रहे हैं तो उस राय के बाद फाइनल डिसीजन होना है कि उनको अब इस ट्रस्ट में रखना है कि इससे बाहर करना, और अगर बाहर करना है तो उसकी जिम्मेदारी कौन सी दी जाएगी ये भी एक बड़ी है। चूंकि ट्रस्ट के नियम के अनुसार उसको बाहर बिल्कुल सैक नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनको सदस्य या किसी तरीके से रखना पड़ेगा, तो इस वजह से भी देखा जा रहा।
0: और आशीष एक्सप्लेन करिए, व्यूअर ये समझना चाहेंगे ये आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर पोजीशन से हटाना है तो पोजीशन से हटाना है, अब उनको कहीं रीइंस्टेट क्यों करने की बात होगी।
1: बिल्कुल, देखिए जो कि ट्रस्ट का जो एक बायलॉज है उसमें इस तरीके से कि किसी को अगर पद से हटाया जाएगा तो पूरी तरीके से सैक नहीं किया सकता है, हालांकि उसको निष्क्रिय किया जा सकता है, उससे जिम्मेदारियां ली जा सकती हैं, उसको ऐसा रखा जा सकता है कि उससे किसी तरीके कार्य ना लिया जाए, लेकिन ट्रस्ट से हटाने के लिए उसके लिए अलग से ही एक बायलॉज है उसमें, तो इसलिए कहीं ना कहीं अब हटाने की प्रक्रिया जरूर उन पदों से हटाया जाएगा, राम मंदिर के कार्यों से हटा दिया जाएगा, राम मंदिर से हटा दिया जाएगा, अयोध्या से हटा दिया जाएगा, लेकिन अब उस ट्रस्ट में चूंकि गोविंद गिरी भी जैसे कोषाध्यक्ष हैं लेकिन वो हरिद्वार से लेकर बाहर रहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर सामने है कि अब आखिर क्या किया जाए, उनके साथ उनको कहाँ रखा जाए, किस तरीके से पोजिशन दी जाए या क्या किया जाए। चूंकि जो पूरा प्रकरण निकल कर आया उसमें आरोप तो कहीं ना कहीं लगे, उससे साख बहुत बड़ी ट्रस्ट की जो है वो गवाही है, तो इस वजह से भी अब कहीं ना कहीं अनिल मिश्रा का जो फेस है उसकी वजह से ट्रस्ट की जो साख को ठेस लगी है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो अब उस पर डिस्कशन चल रहा है। चूंकि फैसला जल्द ही अभी आने वाला है कि उनको इस्तीफा एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो अभी तक है कि उनके इस्तीफे पर चर्चा, ये सहमति जरूर बन रही है कि इस इस्तीफे को लेकर किस तरीके
0: से बताइए आपके पास और इन्फो क्या आ रही है अंदर से ट्रस्ट के हिसाब से, क्या और डिस्कशंस हो रही हैं हमें बताइए।
1: देखिए अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि गोविंद गिरी ने ये कहा कि जो पूरा ये दर्ज हुआ मामला उस मामले को लेकर बहुत सी अनियमितताएं थी, उन अनियमितताओं को देखा गया, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसमें बहुत सारी अनियमितताएं देखी गई। गोविंद गिरी ने इस बात को पूरे सदस्यों के सामने रखा और इस बात का जिक्र भी किया, कहा कि चंपत राय ने इसके बारे में कोई भी खाका तैयार नहीं किया, ना ही इस बारे में कोई जानकारी दी, जिस पर आम सदस्यों की सहमति थी और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत चीज है कि इसको नहीं होना चाहिए। यहाँ तक जो FIR दर्ज हुई उसके बिंदुवार में ये भी कहा गया कि FIR दर्ज करना बहुत जरूरी थी और इसमें जो लोग सीधे सीधे आरोप SIT में थे, SIT में जो पाए गए
0: फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव सेंट टू अस, स्वामी परमानंद गिरी एम्फसाइजिंग सेफगार्डिंग फेथ, स्पीकिंग एट द ट्रस्ट मीटिंग स्वामी परमानंद गिरी हैज स्टेटेड दैट प्रोटेक्टिंग द फेथ इज फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ऑल, रिमार्किंग दैट व्हेन पीपल कनेक्ट विद अ रिलीजियस साइट फॉर देयर फेथ even minor details require special attention. Swami Parmanand Giri asserting safeguarding the faith and sentiments is the top priority. There has to be a sense of responsibility in managing the arrangements. Hame ye Swami Parmanand Giri ke bare mein Ashish thoda bataiye aur kis tarah yahi baat hai jo wo keh rahe hain कि आस्था का ये मुद्दा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल करप्शन नहीं है। पॉलिटिकल करप्शन की तो हमें आदत है सालों से सुनने की, लेकिन जब एक मंदिर इतनी मेहनत से बनता है, उसके डोनेशंस की बात होती है, उस पर जब ये सवाल उठ जाए कि डोनेशंस में कोई चंदा चोरी कर रहा है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है।
1: बिल्कुल, देखिए परमानंद गिरी ने जो कहा है वो भी बहुत कड़े शब्दों में कहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने इस बात को सिर्फ चर्चा में कहा हो, उन्होंने कहा जिस साग को हमने तैयार करने में इतना समय लगा दिया उसको लेकर आस्था में बहुत बड़ी ठेस लगी और इसकी जिम्मेदारी हम ऐसे किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी, और ये इस्तीफे के रूप में हो या फिर किसी भी रूप में। इतने कड़े शब्दों में परमानंद गिरी ने इस बात का जिक्र किया कि करोड़ों लोग जो यहाँ आस्था के तहत आते थे और पूरे देश भर से नहीं देश के बाहर से, उनको इस आस्था का चोट लगा है और इसी वजह से अब कहीं ना कहीं ये एक्शन जो हुआ है वो जरूरी भी है और अब ट्रस्ट में बदलाव की भी जरूरत है, इन्होंने इस बात का भी रिकमेंड किया है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरी सिनेरियो क्रिएट हुआ, जिस तरीके से परमानंद गिरी ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जो विश्वास था वो लोगों का खोया है, जो आस्था थी वो लोगों की टूटी है, और ऐसे में इस टूटी हुई आस्था के लिए एक बड़ा एक्शन लेना बहुत जरूरी है और उसी को लेकर अब एक चर्चा चल रही है कि क्या सिर्फ इस्तीफे से बात चल जाएगी, क्या सिर्फ इस्तीफा दे देना ही सही है, या इसके अलावा एक बड़ा निर्णय लिया जाए जो ट्रस्ट को पूरी तरीके से बदल कर रख दे, उसके स्वरूप को बदल कर रख दे। इस बारे में भी परमानंद गिरी ने कहा, जिस पर आम सहमति लोग जो अपनी अपनी जो चर्चा है वो रख रहे हैं, अपने अपने शब्द रख रहे हैं।
0: जब सारा फोकस हम अनिल मिश्रा और चंपत राय पे रख रहे हैं, वो क्यों नहीं है मीटिंग में? Why are चंपत राय and अनिल मिश्रा not part of the meeting? क्या उनको इनवाइट नहीं किया गया, उनको आने नहीं दिया? तो किस तरह से फिर उनकी बात सुनी जाएगी? उनकी बात सुनना भी उतना ही जरूरी है।
1: देखिए, उनकी बात को सुना गया है, ऐसा नहीं नहीं सुना गया है, उनकी फॉर्मेट को लिया गया है, लेकिन उनको मीटिंग में इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि जो चर्चा है वो डिसीजन मेकर, डिसीजन जो ले रहे हैं वहां पर, वो फिर चाहे गोविंद गिरी वहां पर हो, परमानंद गिरी हो, या इसके अलावा वहां पर जो अन्य मेंबर बैठे हैं, उन सभी की सबसे बड़ी है कि आपस में जो चर्चा हो रही है वो हर मुद्दे पे हो रही है। अगर कल्प्रिट सामने रहेगा या जिसने इस्तीफा दिया है वो सामने रहेगा तो शायद उसके सामने ये चर्चा नहीं हो पाएगी। जो चर्चा करनी है, जो डिसीजंस लेने हैं या जो नए नाम सदस्य को देने हैं, वो सारी चीजें नहीं हो
0: पाएंगी। फ्रॉम इन साइड द ट्रस्ट, द फोकस नाउ ऑन अनिल मिश्रा क्लियरली एंड चंपत राय। देन
2: And yet, things are happening inside the meeting about what changes can be done in the trust for the better.
3: Mint of the trust, obviously for the belief that has been lost amid the Ram devotees. And not just that, about the culprits, what things could be done, as they are quite happy with the way SIT is going with the investigation, police, the way police is investigating this particular case. But yes, the resignation thing, the acceptance of resignation, be it of Anil Mishra or Champat Rai, yes, the final official call regarding that will be accepted or will be taken in the final minute of the meeting after the say of Nritya Gopal Das, who is the president of the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. And since then, anything coming before that could be called a speculation. Yes, we know that as per the sources, the resignation will be accepted. But final word about the resignation, or what we say, the official confirmation about the resignation, will be made by the trust. By sources, we are saying it since morning that the danger is looming over Champat Rai and Anil Mishra, especially
0: the
3: for their existence in the
0: for Champat Rai
3: trust.
0: And it has to. If he's in any way involved, or at least the ones associated with him who have been accused, he will have to face accountability. This is not about politics. This is not about a party. This is about Aastha of millions of, not just Hindus, all Indians, people who believe in Ram, people who believe in Ram Temple. They will have to be assured that this action cannot be allowed at all. Appreciate you joining us. All our reporters on the ground from Uttar Pradesh, they are tracking the latest. I have some more news coming in. Let's take a look at that. Shifting focus now, Prime Minister Narendra Modi has reached Indonesia. This is a multiple nation tour that he's a part of. But Indonesia is very interesting. Jakarta is where Prime Minister Modi has arrived. 3-day visit here. First bilateral trip to the country after 8 years. Indonesian President Prabowo Subianto welcomed Prime Minister Modi. Also, grand cultural welcome was on display at the Jakarta airport to welcome PM Modi. The first step on a 3-nation tour that will take him to Australia and New Zealand. So, Australia, of course, closer to Indonesia. That's going to be the next stop, then New Zealand. Now, remember, Indonesia and India have a massive historical cultural connect. While Indonesia now is largely a Muslim country, but there are massive Hindu architecture, Hindu history, the remnants or the mentions, for example, from the Ramayana and the Mahabharata can be seen in places like Bali. But this is going to be as much about history, cultural connect and people. But for more on that, I want to bring in India Today Global Editor Pranay Upadhyay. Pranay, tell me about this visit. So there is Australia, there is New Zealand. We understand more developed countries. What is the reason, do you think, Prime Minister Modi is in Indonesia? What are we expecting from this meeting?
2: Indonesia is a country with which India shares historic civilizational ties and a country which is neighbor of India in the Indian Ocean region and, in fact, a strategic partner since 2018. And last year, President Prabowo Subianto, who was there to receive Prime Minister Narendra Modi along with his four ministers, in fact, he visited India and he was the chief guest of 2025 Republic Day celebrations. And in fact, Prime Minister Narendra Modi reached in Indonesia. He will be spending around 3 days there. And besides addressing the Indonesian Parliament, besides addressing the community event there and strengthening and India-Indonesia strategic ties.
0: Looking forward to all the updates that you're sending away with regard to Prime Minister Modi's visit to Indonesia. So a lot of course, agreements that will be signed there as well. All right, on that note, I'm wrapping up this fast-paced bulletin, but details continue about what's the fate of Champat Rai. 5 p.m., more details on that from Sonal. Thank you for watching and staying tuned to India Today. Take care of yourself.
4: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
5: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.

0: Suzuki, Hyundai will bring out the E100 capsule, sort of capable vehicles, within the next 2 months. Now, the timing you'll see is not a coincidence. Global oil prices remain unsustainable. Tensions in the Middle East keep threatening supply chains. And India's crude import bill keeps climbing up. So the government, you might say, is doing one thing that it can control, growing how much ethanol goes into the tank. So on paper, this is a clean energy story. Lower emissions, support for farmers, since ethanol comes from the crops like sugarcane, and less dependence on imported oil. India's ethanol industry also has surplus capacity right now, and with global energy markets this jumpy, the government wants independence sooner rather than later. As of this year, E20 fuel is sold at nearly 90,000 fuel stations across the country. Newer cars and two-wheeler vehicles from Maruti, from Suzuki, from Honda, TVS, Hero, Tata, Hyundai, all are built to run on it. The problem is everything already on the road before that was not. What do I mean by that? Now, here is something most drivers still get wrong. Many assume, and this is a mistake I did, so I really want you to learn from it. Many assume that paying extra for the premium petrol, you know, your XP95, your Power 95, your Speed 97, buys them cleaner, even lower ethanol fuel. That's what even the petrol pumps will tell you, by the way, I was told. But it does not. Because an RTI reply confirmed that premium grades carry the same 20% ethanol as regular petrol. The only fuel, however, that is actually ethanol-free is 100-octane petrol, like XP100, and that comes at a real price premium as well, not even available everywhere. So today, at the pump, there is really just two choices, E20 or ethanol-free 100-octane. Now, so for vehicles never built for higher ethanol, the issues are physical, not theoretical. Ethanol absorbs moisture faster than petrol, and that moisture can corrode the fuel compounds and also different other components, damage the rubber parts. All of that can happen over time. Stuff that we're already hearing about. Ethanol also, remember, carries less energy than petrol, which shows up as lower mileage. One Volkswagen Vento owner saw mileage drop from 10 kilometers a liter to just 6.3. And that was on E20. Push the blend up to 30% and the gap only grows. And he's not alone. There have been multiple accounts on social media who claim that their vehicles have suffered engine damage, sometimes even permanent, due to being forced to run on ethanol blended fuel. This is a real problem. The government's answer to all of this is the balance sheet. Data shared in Parliament shows that between 2014 and December 2025, the ethanol blending program saved more than 1,63,000 crore rupees in foreign exchange, replaced over 277 lakh metric tons of crude oil, and cut close to 832 lakh metric tons of carbon emission. Farmers have been paid more than 1,43,000 crore rupees through the program. So it's good economics, according to the government. But is it really good for you and me? For the government, yes, in a fairly straightforward way. Billions saved on oil imports, a boost for domestic agriculture, right? A new industry around biofuel. For consumer, the answer is not as clean. Ethanol is doing real good for the country's energy bill and its farmers. But is it really doing right by our cars already sitting in your garage? That's a question nobody seems to be addressing. And the government has not fully answered that yet. India has decided whether it wants to go with fuel, whether it's still unclear. However, it seems on whether Indian vehicles, Indian infrastructure, Indian drivers are even ready for that pace. And we are not hearing enough from the government. So today, for you, for our five live viewers, I have a pro tip. Next time you go to the petrol pump, you go to the fuel station, ask for petrol additives. Ask for something like this. These are to be added along with E20 to your fuel. Sometimes it comes in a bottle like this. It's just called add-on. And sometimes in smaller sachets like these. These are said to be anti-corrosion, and they don't claim that they will do no damage at all, but at least they will help with reducing the impact of damage that the moisture in ethanol is causing to your car. Now remember, they are available. They are not very expensive. One bottle will cost about 200 rupees for this one. One packet that goes with every litre, if I'm not wrong, will cost, not much, just 10 rupees. But you have to ask for it. Because your guy who's filling in the fuel for you does not really know, perhaps does not even care. So you have to be vigilant and add this petrol additive to your tank. Also, another pro tip. Some people say that after you keep ethanol, or E20, let me put it that way, stable for a very long time, it separates. That's why they say if you're using E20, it's a good idea to take your car out if it's standing for too long. If it goes beyond 2 to 3 days, please ensure it's going out for a ride. Also, they say it's a good idea not to do a full tank, because it again gives it some room to move so that it keeps circulating and there is no separation. Yes, that's the good old Indian jugaad one really has to do while the government still makes up its mind on how to deal with damage on cars and vehicles due to E20. All right, having understood that, let's move on to the other big focus we have for you on the program today. Now, imagine being posted to a hospital that does not exist. Not because it was shut down, not because it was damaged, but because it was never built. Welcome to Indore's so-called Coast Hospital. Approved in 2020, the 100-bed civil hospital still has no land, no building, not a single brick laid. Yet on paper, it is functional. Not just functional, 87 posts were sanctioned. Doctors, nurses, technicians were transferred there for years. In fact, the latest posting was made just last month. So where did the 87 sanctioned staff actually go? Doctors, nurses, paramedical staff were deployed to other government hospitals across Indore and posted at Sanjeevani clinics as well. And they were never working at this hospital, this ghost hospital, because the facility was never really built. The government maintains there are temporary arrangements that will continue until the land is allotted, but the biggest losers are not employees. They are the 3 lakh residents of the area. From places like Bicholi, from places like Kajrana, from places in the nearby area where there is no other hospital. They are waiting for this hospital as because they were promised 6 years ago there will be a place that will cut down the overcrowding of hospitals that take place in the metros. A hospital without a building, staff without a workplace, and patients without healthcare. The government, however, says there is no ghost hospital, only a project delayed by circumstances. According to Madhya Pradesh Health Minister Rajendra Shukla, the biggest hurdle has been finding suitable government land in a densely populated urban area. Until construction begins, the sanctioned staff has been deployed to other government hospitals, according to him, and Sanjeevani clinics as well, with the assurance that the hospital project is still very much alive, perhaps only on paper. But the explanation raises even bigger questions. If land was never available, why were 87 posts sanctioned? Who continued issuing transfer orders to this hospital that has no building? That simply does not exist. Who was tracking the project's progress over the last 6 years? Why did no one raise the alarm earlier? And ultimately, who owns the responsibility for a promise that exists only on paper, but not on the ground? Listen in to what the health minister has to say in his defense.
1: हाँ देखिए, 6 साल पहले वो अर्बन पीएससी थी जिसको 50 बेड के सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन किया गया था, और जब उन्नयन होता है तो पद भी मंजूर हो जाते हैं, लेकिन उसका निर्माण इससे शुरू नहीं हो पाया कि उसके लिए वहाँ पर जमीन मिल नहीं पाई।
2: देखिए, जहाँ तक खजराना सिविल अस्पताल का मामला है तो इसका हमको भूमि आवंटन 2-3 साल पहले हुआ है और वर्तमान में हमारे पास कब्जा नहीं है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हमको कब्जा मिल जाए और विभाग द्वारा वहाँ पे 100 बेड का सिविल अस्पताल स्वीकृत किया हुआ अस्पताल 19-20 में स्वीकृत हुआ है ये। और उसके बाद में स्वीकृत होने के पश्चात जब भी प्रोजेक्ट होता है तो एक प्रक्रिया रहती है जिसके तहत जमीन का आवंटन होता है, जमीन के आवंटन के बाद में जमीन का कब्जा प्राप्त होता है और उसके बाद में जो भी निर्माण एजेंसी है वो विभागीय स्तर पर निर्माण एजेंसी तय होकर निर्माण होता है।
0: All right, Ravish Pal Singh, my colleague, joins us for more details on the story. Ravish, क्या कहानी है भाई? ये तो वैसी वाली स्टोरी हो गई, this happens only in India. अस्पताल सैंक्शन हो गया, स्टाफ अलॉट हो गया, एक पत्थर नहीं रखा गया यहाँ पर, पत्थर छोड़िए उन्होंने पेपर पर लैंड भी प्रोक्योर नहीं कर पाए हैं। क्या बता सकते हैं कौन से मंत्री ने इसका इनॉग्रेशन प्रॉमिस किया था और अब वो मंत्री कहाँ है, कहाँ बैठे हैं?
3: देखिए, आपको याद होगा सोनम, एक मध्य प्रदेश के लिए एक टैगलाइन बड़ी इस्तेमाल की जाती है, एमपी टूरिज्म का एक बहुत पुराना ऐड हुआ करता था, उसमें कहा जाता था एमपी अजब है सबसे गजब है, ये टैगलाइन थी एमपी टूरिज्म की कुछ साल पहले और देन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने अवार्ड भी किया था एमपी टूरिज्म को इसके लिए। लेकिन जब से ये ऐड आया उसके बाद से मध्य प्रदेश में एक के बाद एक ऐसे कई वाक्य सामने आएगा जिसपे एमपी टूरिज्म की टैगलाइन बहुत फिट बैठती है और ये जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है इंदौर के इस हॉस्पिटल का वो भी इसी टैगलाइन के तहत है। देखिए, 2020 में जब इस हॉस्पिटल के लिए जमीन मांगी गई थी या जब ये हॉस्पिटल प्रपोज्ड हुआ था तो उस वक्त की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कोई हेल्थ मिनिस्टर था ही नहीं। अब वजह बता देते हैं, वजह ये थी कि उस वक्त पूरे देश में कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था और मध्य प्रदेश में एक पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था उसी दौरान। ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, पूरी की पूरी कमलनाथ सरकार जो है गिर गई थी और कमलनाथ सरकार के गिरते ही उनकी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर रहे तुलसी सिलावट, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे लेकिन उनके पास उस वक्त कोई मिनिस्ट्री नहीं थी तो उस वक्त सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे देन चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और उनके अलावा कोई भी दूसरा मिनिस्टर पोर्टफोलियो के साथ उस वक्त कैबिनेट में नहीं था जिस वक्त इस हॉस्पिटल को, क्योंकि कोविड काफी आ चुका था, सरकार को जरूरत महसूस हुई कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा और ये जो एरिया था खजराना इसके आसपास काफी ज्यादा केसेस आए थे कोविड के, उस दौरान ये सोचा गया कि कोविड के समय ये एक सही मौका है अगर यहाँ पे एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, एक हॉस्पिटल डेवलप किया जाए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो। लेकिन सोचिए, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है खजराना, वहाँ पे सरकार को ये मालूम होने के बावजूद भी कि वहाँ पे लैंड मिल पाना इतना आसान नहीं होगा। इंदौर जैसा शहर जो कि मिनी मुंबई कहा जाता है, सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर शहर के बीचों बीच खजराना जैसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में जमीन मिल पाना ये वाकई एक टेढ़ी खीर थी, लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पे। अब 6 साल बाद ये मामला कैसे खुला? इसी साल जब मध्य प्रदेश में हर साल जो है ट्रांसफर पोस्टिंग खुलती है और उस दौरान ये सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए होता है, लेकिन इस साल एक क्लर्क जो है उसको पोस्ट किया जाता है इस हॉस्पिटल में जो टेक्नीशियन था, लेकिन जब वो ज्वाइनिंग के लिए जाता है तो देखता है कि इस नाम का तो कोई हॉस्पिटल वहां है ही नहीं। उसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है, वो इसकी कंप्लेंट जो है हायर अथॉरिटीज को करता है और फिर पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल के नाम पे 87 पोस्ट अलॉटेड हैं वहां पे कभी वो हॉस्पिटल बना ही नहीं और पिछले कई साल से, पिछले 6 साल से अगर देख लिया जाए तो लगातार वहां पे लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे थे, लेकिन ये बात इसलिए सामने नहीं आ पा रही थी क्योंकि जब वो लोग जाते थे हायर अथॉरिटीज के पास तो उनको फिर बाकी हॉस्पिटल में या क्लिनिक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता था, पोस्ट कर दिया जाता था और ऐसे कभी मामला सामने आया नहीं। और अब जब जून 2026 में ये नया ट्रांसफर हुआ तब जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आप सोचिए कि अब हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने उस वेबसाइट उस पोर्टल को बंद कर दिया है जिस पोर्टल के जरिए ऑटोमेटेड सिस्टम में ये ट्रांसफर लगातार हो रही थी, पोस्टिंग लगातार हो रही थी, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप ही की सरकार में जिसके पास तमाम सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लैंड डिपार्टमेंट भी आप ही के पास है, तो क्या उस वक्त ये नहीं पता था कि वहां पर जमीन ही नहीं मिल पा रही है आपको? जमीन नहीं मिली लेकिन हॉस्पिटल आपने पहले ही प्रपोज कर दिया, जबकि ये रूल नहीं है। रूल तो तब आता है जब आपने पहले जमीन देखी होती है, उसके बाद वहां पे उस जमीन के हिसाब से इंस्टीट्यूट लाया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, लेकिन यहाँ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया बाद में जमीन ढूंढने निकले जो आज 6 साल बाद तक मध्य प्रदेश सरकार को नहीं मिली है।
0: रवीश, मुझे भी एक एड मध्य प्रदेश टूरिज्म की टैगलाइन याद आ रही है, उसमें था कि हिंदुस्तान का दिल देखो,
4: कैसे देखें, कहाँ हैं, पेपर पर ही दिख रहा है अभी तो. द कोर इशू, एंड आई कीप सेइंग दिस ऑन फाइव लाइव अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इफ यू कांट टेक केयर ऑफ हेल्थ केयर, इफ यू कांट टेक केयर ऑफ एजुकेशन, अगर आप ये दो चीजों का ख्याल नहीं रख सकते तो क्या क्या फायदा है किसी अच्छी सरकार के होने का, क्या फायदा है ब्रूट मेजोरिटी लाने का, अगर ये भी नहीं दे पा रहे. और दाद देनी पड़ेगी उस क्लर्क की जिसने ये एक्सपोज करा है, उससे अगर आपकी बातचीत हो जाए तो बहुत ही और समझ में आएगा कि कैसे समझ में आया ये पूरा मामला और ये कहां

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: People who think कि फीकी चाय पीने से वो बहुत हेल्दी चॉइसेस ले रहे हैं, घर का खाना खाने से वो कैसे अनहेल्दी हो सकते हैं, उन सबको वो काफी करारा जवाब देती हैं।
2: ज्यादातर हमारे पेरेंट्स में मैंने देखा एवरेज, दे हैव गॉट अ पाउच, ठीक है, एंड बाजू पतली होती है, टांगे पतली होती है, सो दैट मींस देयर इज अ मसल वेस्टिंग, ठीक है। और आजकल ना मेरी मदर को ना सारे बोल रहे हैं, अरे तुम तो कमजोर हो गए बिकॉज उनकी ये पतली है। मैंने कहा मम्मी नहीं, आप ओवरवेट हो, पेट आपका बाहर निकला है, अब उस चक्कर में वो और खाना खा रहे हैं।
1: हमारी जनरेशन के साथ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ये खाना है, हमें तो ऐसा खाना मिलता था हम खा लेते थे।
2: बोला अब हालत देखो, बोला बात का नजर, मामा बताओ मासी का क्या हाल है, बुआ का क्या हाल है, मामा का क्या हाल है, चाचा का क्या हाल है, चाची का क्या हाल है, सबको पता चल जाए,
1: सबकी रिपोर्ट दिखाओ मुझे।
2: सत्संग कीर्तन में ज्यादातर जाते, इट्स नॉट बैड, बट उसके बाद खाते क्या है, समोसा मिल जाएगा, गुलाब जामुन मिल जाएगा, जलेबी मिल जाएगी,
1: प्रसाद में डायबिटीज मिलता है, इंडियन खाने में हमारे क्या बुराई है।
2: जिस तरह से हमारे भरवे करेले बनते हैं ना भैया, ठीक है, घंटा घंटा लग के तेल में फ्राई करके, एक बार फ्राई करके, दो बार फ्राई करके, फिर तीसरी बार जाकर के आपके सामने आता है। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि घर का खाना हेल्दी है। प्यार पता है कैसे झलक रहा है, एक चम्मच घी, दो चम्मच घी, तीन चम्मच घी, दैट्स लव।
1: Give me tips. How do I explain parents the importance of rethinking their food?
2: एक balance word ना मुझे लगता है पुरानी generation में है ही नहीं। कितना खाना है, ठीक है? Healthy तो केले भी होते हैं, bananas are healthy. इसका मतलब दिन में तुम 20 केले खाओगे।
1: When you have a small kid at home,
2: yes.
1: जितने लोग वो coming, सब chocolates लेकर आ जाते हैं। So and you are shamed for that कि कैसी माँ हो,
2: कैसी माँ हो, हाँ, बड़े होकर के तो खा लेंगे ना। I said बड़े होकर के तो बच्चा alcohol भी पिएगा। दे दूँ अभी से क्या? हमारे अगर यहाँ पे तुम किसी को चाय के साथ मखाने सर्व कर दो, तो उनको लगेगा सूखा
1: सूखा
2: सूखा सूखा। लोग समझते हैं दाल इज अ प्रोटीन। यस, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ प्रोटीन, इट इज प्रोटीन प्लस कार्ब्स।
1: Is there a way to make your शादी का खाना on what you're eating little bit healthy?
2: अगर suppose मैं घर से निकलने से पहले ही मैं दो अंडे खा करके गई हूँ, suppose, ठीक है, तो my body is satiated, उसको जो nutrients चाहिए थे वो मिल गए।
1: 3-4 बजे की मेरी क्रेविंग होती है चाय के साथ, के लिए मुझे कुछ स्नैक चाहिए।
2: देखिए ऊपर
1: पर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है ना, वो चाय के साथ नहीं जाएगा। Is there a way to make healthy choices when you're ordering food? क्या हमें क्विजींस कुछ हैं जो ज्यादा अनहेल्दी होती हैं, कुछ नहीं हेल्दी होती? वेजिटेरियंस क्या खा सकते हैं? देयर आर सम बुरीटो ऑप्शन, ओके, देयर इज हनी ओट आल्सो, रोस्ट गार्लिक आल्सो, व्हाइट इटालियन आल्सो, पार्मेसान ओरिगैनो आल्सो। नो, ऑफिस के डब्बे में कैसे हेल्दी खाना रखा जाए?
2: प्लीज यूज फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजीज, अगर आपको लगता है तो। आपके कैंड चिकपीज आते हैं, कैंड बीन्स आते हैं, उनको यूज करो। अब मुझे पता है मैं ये सब चीज बोल रही हूँ, काफी लोगों को लगेगा

0: चोरी, अभी आप चोरी हो रही है उधर, आपके कंट्रोल में है ना ये ट्रस्ट, हम तो नहीं है, किसी को आपने लिया ही नहीं है उसमें, आपके सब लोग बैठे चोर मंडल, तो ये जिम्मेदारी आपकी है और आरएसएस ने भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए चोरी की। एक्शन होगी मीन्स क्या होगा, जो छोटी मछली है उसको पकड़ लेंगे, बड़ी मछली को छोड़ देंगे। वहाँ अयोध्या में एक प्रकार से गैंगवार चल रहा है, अंडरवर्ल्ड एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें तान कर लोग खड़े हैं, ट्रस्ट में भी और अयोध्या में भी कब्जा करना चाहते हैं, वहाँ राम की अयोध्या के ऊपर कुछ लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं।
1: उस मंदिर पे कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं, उस मंदिर पे कंट्रोल इस देश के लोगों का है। और जब हम सुनते हैं 40% पैसा ये चोरी हो गया या भ्रष्टाचार हो गया, ये गलत चीज है। जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ जो ट्रस्टीज है, ट्रस्ट में जो भी लोग है बहुत पावरफुल है, उन्होंने वहां पे करप्शन किया, इसलिए हम सबकी मांग है सबके ऊपर वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए।

0: as he does at the English Premier League week after week.
1: Oh, he's a machine. He's an absolute machine. He's, you know what he reminds me of? The Terminator. Remember that movie?
0: Yes.
1: He's like the Terminator. He's big, he's powerful, he's strong, and he just blows his way through everyone on his way to goal. Unbelievable.
0: Hardik?
2: Yeah, I mean, absolutely. What Joe said, he is a beast. You know, you might not see him involved in a lot of the game. He's not a very skillful player, but he's a proper finisher. Just like Harry Kane, he's a proper goal scorer. And whenever his team needs him, if be it Manchester City in the Premier League or here, he's always there.
0: Okay, what that has done, and he was outstanding, what that has done is knocked out a people's favourite in Brazil. It's the first time in a long time, I think 1990. Since then, every World Cup, they've reached the quarterfinal since 1990. First time ever, Brazil, five-time champions, don't even make the quarterfinals of the World Cup. It's been a steady decline, would you say, Joe, for, as I said, people's favourite, known for their beautiful football?
1: Yeah, absolutely. I think Brazil now are riding on romance. I think this is a lost generation of players. I don't think they've ever lived up to the Brazilian expectations, which, of course, were huge. But you could probably look back to maybe 2014 as the start of the decline. Remember when they got absolutely spanked in that tournament? What was it? 7-1, yeah. I think. So they have not delivered as to the Brazil that we all know and love from decades gone by.
0: What happened in that particular game, Hardik? Was it just Haaland or were Brazil just not good enough? It's back to the drawing board. What do you do with an Ancelotti? Continue with him or no? Start afresh?
2: Individually, all the Brazilian players have been amazing this season. But when they come together as a team, I feel like there's a lot missing. There are too many star personalities, too many winners, but when they come together, what we've seen over the years in England, they've been amazing individually, but when they come together as a team, they've not been able to win a lot. That's what I feel is going on.
0: Okay, unfortunately, I'll have to interrupt this programming. We've got some big breaking news coming in at the moment.
3: उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है, इसलिए हम लोग नियत तिथि के भी कुछ दिन पहले आज बैठ करके गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए और स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है और जी और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपतराय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब तक जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है, उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। हम लोगों को आप लोगों के सामने यह भी बात बतलानी है कि प्रसार माध्यमों में जो कुछ बड़ा बड़ा हवा सामने खड़ा करके कहा जा रहा है वह कितना सत्य है इसको समाज को जानना चाहिए। झूठ मूठ की अनेक बातें अनर्गल प्रलाप करते हुए अनेक प्रसार माध्यम हम लोगों के सामने रखते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं, इस बात से समाज को सावधान हम करना चाहते हैं। हमें कहा जाता है कि वहां पर केवल दान पात्रों में चोरी नहीं हुई तो अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है वो रामायण की पुस्तक कहाँ है और वो हमारे काकभुषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है और वो पादुकाएं कहाँ है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ये पांच तो जिनकी चर्चा चली है वो आपको नमूने के लिए रूप में दिखाने के लिए हम लाए हैं, अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अब आगे जो काम करने वाले हैं वो काम इस प्रकार का होगा कि कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे, इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है। और इसके लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु भी हम लोगों ने एक छोटी समिति गठित की है और उस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर 22 तारीख को हम मिल रहे हैं, उस तक हम लोगों का और भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ होगा। हम समझते हैं कि तब तक SIT की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो इन सब का विचार करने के लिए और कुछ न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए फिर 22 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं और उसके समय भी आप लोगों के साथ और मिलकर के बात करेंगे। एक बात हम निश्चित रूप से बतलाना चाहते हैं कि चोरी तो चोरी है और उसमें उसका जो उसकी जो तलाश करनी है वह SIT कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए, और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान में और लेनी चाहिए कि इसको ढाल बना करके इसके पीछे जो संपूर्ण राष्ट्र में हो हल्ला मचाया गया है वो उसके इरादे साफ नहीं है। राम भक्ति के नाम को लेकर के वो लोग आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने स्वयं ये उच्चतम न्यायालय में लिख करके दिया कि राम हुए ही नहीं थे, राम सेतु बना ही नहीं है, इस प्रकार का सब कुछ राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है वह साधारण नहीं असाधारण है और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को ये ध्यान में लेना चाहिए, इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है और हम लोग ऐसा पुनः संकल्प करते हैं कि इस राम भक्ति को हम बरकरार रखेंगे, इस राम भक्ति को दृढ़ करेंगे और किसी भी प्रकार की फूट हमारे समाज में निर्माण नहीं होने देंगे। ध्यान रखना मित्रों, मैं सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सनातनियों को, हिंदू आस्थाओं को आवाहन करता हूं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। ये किया जाने वाला, खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वह नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साह ही नहीं बनेंगे। आप सभी का आवाहन है कि आप सब लोग इस कार्य में धैर्य रखें, धीरज रखना चाहिए, न्याय होगा, अपराधियों को दंड मिलेगा, हमें न्यायालय का विश्वास है और हम अपनी राम भक्ति की धारा को अखंड बहाते रहेंगे और राम भक्ति का ज्वार ऐसा ही उठाते रहेंगे जिससे राम राज्य आएगा। तब तक हम थमने वाले नहीं हैं। आप सभी को, राम भक्तों को मेरा प्रणाम, अभिवादन और आवाहन कि अफवाहों का विश्वास न करें, सत्य की जांच होने तक स्वस्थ रहे, समाज में शांतता का वातावरण रखें। आपको कहीं पर भी कोई भी आशंका है तो सीधे कार्यालय में आकर के उसकी पूछताछ करें, हम आपको उत्तर देंगे। वहां पर आपको यदि कोई वस्तु, आप अधिकृत व्यक्ति है उसको जानने के लिए, तो उस वस्तु को दिखाएंगे और ऐसी 28 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास है। आप विश्वास, धैर्य रखें, शांति बनाए रखें और अपनी आस्था को अधिक बनाए रखें। भारत माता की जय, जय जय श्री राम।
4: So the big breaking news that's coming in right now, the trust has confirmed that Champat Rai's resignation has now been accepted, that he was extremely regretful in the meeting and therefore said it's only right I step down. The trust therefore has accepted his resignation. Interim General Secretary will be Krishna Mohan. The next meeting will be on July 22nd, where they say we'll have more details of exactly what is the scope and what is the scale of theft, of loot that we're talking about. Maria Shakil is also with me for more on this. Maria, what do you make of the decisions made by the trust?
5: I would say it isn't really much of a surprise that Champat Rai's resignation has been accepted. The fact that he went in and gave the resignation was also something that he would have discussed with the trust members. And today was...
4: Okay, just my apologies. We're cutting across to the Interim General Secretary now speaking.
6: Jai Shri Ram. Main Krishna Mohan, Nyasi, aaj is baithak mein, जिसका विवरण हमारे गुरुजी ने दिया है, उसमें मुझे कार्यकारी, जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन की करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अभी इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी जिसका फायदा लोगों ने उठाया, तो मेरा यह पहला प्रयत्न ये प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना, इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास की के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है, उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे, और पुनर इस जो अविश्वास को समाज के मन में पुनर स्थापित करेंगे। बंधुओं, ये जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करते समय जो दर्शनार्थी देते हैं, दान करते हैं, अर्पित करते हैं, उसका हम जो जो न्यास के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना है, हम उसको उसी को करेंगे और पारदर्शी रूप से करेंगे। सभी को बताया जाएगा बाद में जब हो जाता है, क्योंकि बीच में उस तरफ की जानकारी कुछ प्रोसेस में होता तब न कह करके पूरा जब बन जाता है उसको पूरे पारदर्शी ढंग से इस बात को कहा जाएगा, दिखाया जाएगा, सभी को बताया जाएगा, जिससे कि समाज में हमारे इस न्यास के प्रति जो अविश्वास की जो बात जगी है उसको मैं फिर से पुनर्स्थापित कर सकूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग लगेगा, सहकार्य लगेगा, साथ में जो मीडिया है उससे भी मेरा निवेदन है कि जो सत्य बातें हैं उसी को प्रसारित करें। कुछ पूछना है जो न्यास के लोग हैं उनसे, जो अधिकृत लोग हैं उन्हीं से पूछें, आपको सही जानकारी मिलेगी। केवल प्रोसेस होते समय उस बात को नहीं बताता, जब अंतिम हो जाता है तब उस बात को आपके मीडिया में अवश्य रखा जाएगा, आगे भी रहता रखा जाएगा, ये आपको मैं निवेदन करता हूं।
7: All right, the latest news break right now coming in. Champat Rai and Anil Mishra's resignations have been accepted by the Ram Mandir Trust. The next meeting will be on the 22nd of July. The Trust, Krishna Mohan now will step in to be the interim General Secretary. Lots of reactions coming in.
8: ट्रस्टी के पारा संघ जी ने कहा इस्तीफा अपने आप स्वीकार हो जाता है, तब तक के लिए कार्यवाहक महामंत्री बनाए गए कृष्ण मोहन जी।
9: अच्छा, और अनिल मिश्रा जी को क्या क्या महाराज जी, उनको
8: अनिल मिश्रा की कोई चर्चा नहीं।
9: अच्छा, ये गोपाल राव जी की बात चल रही थी महाराज जी,
8: गोपाल राव जी अब उसमें नहीं बुलाए गए।
9: अच्छा, बैठक से उनको दूर रखा गया। तो महाराज जी, चंपत जी बैठक में मौजूद थे कि नहीं?
8: नहीं,
9: बैठक में नहीं थे। महाराज,
7: reactions coming in after the meeting of the trust has gotten over sweeping changes that have been made. Champat Rai, Anil Mishra's resignations have been accepted. There are other people stepping in. Krishna Mohan now to be interim general secretary. These are the changes that have been made. Also, there is a plea that has gone out by the Ram Mandir Trust, especially where the media is concerned, that only report bona fide information. The investigation is carrying on and will be made public as it concludes. But the big news, big takeaway coming in from all of this is that, of course, the next meeting is on the 22nd of July, but the big ticket decision that was made by the trust is to accept the resignations of both Champat Rai and Anil Mishra. Krishna Mohan now to be interim general secretary, but both the resignations have been accepted while an investigation, an SIT, continues in what has been clear appropriation of funds and donations where the Ram Mandir is concerned. And the latest now, two big decisions that have been made, some would suggest were expected, that Champat Rai and Anil Mishra's resignations have now automatically been accepted.

0: चोरी, अभी आप चोरी हो रही है उधर, आपके कंट्रोल में है ना ये ट्रस्ट, हम तो नहीं है, किसी को आपने लिया ही नहीं है उसमें, आपके सब लोग बैठे चोर मंडल, तो ये जिम्मेदारी आपकी है और आरएसएस ने भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए चोरी की। एक्शन होगी मीन्स क्या होगा, जो छोटी मछली है उसको पकड़ लेंगे, बड़ी मछली को छोड़ देंगे। वहाँ अयोध्या में एक प्रकार से गैंगवार चल रहा है, अंडरवर्ल्ड एक दूसरे के खिलाफ बंदूक के तान कर लोग खड़े हैं, ट्रस्ट में भी और अयोध्या में भी कब्जा करना चाहते हैं। वहाँ राम की अयोध्या के ऊपर कुछ लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं।
1: उस मंदिर पे कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं, उस मंदिर पे कंट्रोल इस देश के लोगों का है। और जब हम सुनते हैं 40% पैसा ये चोरी हो गया या भ्रष्टाचार हो गया, ये गलत चीज है। जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ जो ट्रस्टीज है, ट्रस्ट में जो भी लोग है बहुत पावरफुल है, उन्होंने वहां पे करप्शन किया, इसलिए हम सबकी मांग है सबके ऊपर वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: भी खुलासे हुए हैं कि वहां भी चंदा चोरी हुआ है। ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में। और चंदा चोरी तो बिल्कुल साफ हुआ है, हजारों करोड़ का चंदा चोरी हुआ है उत्तर प्रदेश में, और अंदर से ही ये सब जानकारी आ रही है।
4: अगर वो आरएसएस और वीएचपी को जिम्मेवार ठहरा रहे लूट में, तो उनको एसआईटी ने समन करना चाहिए, उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये किस आधार पे कहा। ये कहने का क्या कारण हुआ कि आरएसएस ने या वीएचपी ने इस लूट में कोई हिस्सा लिया है? और अगर ये बयान सिरे से झूठा है तो सनसनीखेज और असंतोष और गुस्सा भड़काने वाला बयान है, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उनको भी दंड मिलना चाहिए।

0: को जो चंद लोग आए हैं 50 साल जिंदा रहेंगे 100 साल रहेंगे उनके करने से कुछ नहीं होता है।
1: भगवान श्री राम वही है और उनका दर्शन बड़े दिव्य ढंग से हो रहा है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये घटना जो हुई वो निंदनीय है, घोर निंदनीय, इसमें कोई दोहरा नहीं।
2: तो आरोपियों पे कार्रवाई हो रही है,
1: निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है और सशक्त कार्रवाई और सशक्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बड़ी मछलियां कही जा रही है और SIT के जांच में यदि बड़ी मछलियों का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बड़ी मछलियां यदि यहाँ फंसे तो निश्चित रूप से उनका भी ट्रीटमेंट अच्छे ढंग से होना चाहिए।
2: पर अयोध्या के जो टूरिज्म है या लोग आते हैं या घूमने भी आते हैं, दर्शन के लिए भी आते हैं, उस पर इसका कोई असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा?
1: उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं, श्रद्धा भाव सभी लोग पक्का है बिल्कुल। और हम सनातन धर्मावलंबी जो है उस अटूट श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं, उस श्रद्धा के साथ यहाँ से जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एक कलंक जो है लगा है।
2: अयोध्या के रोजगार पर तो इसका असर नहीं पड़ेगा?
1: नहीं, रोजगार पर तो असर पड़ेगा ना, जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होगी तो थोड़ा मोटा असर पड़ेगा। लेकिन ये जो है संक्षिप्त कुछ काल के लिए है, जिस दिन ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी फिर से वही दशा हो जाएगी अयोध्या की।
2: कुल मिलाकर लोगों का यही कहना है इस पूरे मसले को लेकर कि चंदा चोरी जो हुई है उसके आरोपियों को पकड़ा जाए, कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन फिलहाल अयोध्या पर कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ा है और दर्शन भी सुलभ तरीके से यहाँ हो रहे हैं।

0: A 12-year-old girl's brutal rape and murder has shocked West Bengal, triggering widespread outrage. After one of the accused was lynched by an angry mob, three other accused, including the prime suspect, have been arrested. This shocking incident has also sparked a political showdown, with the TMC accusing the Shivendu government of putting Mamata Banerjee under house arrest and not letting her meet the family or victim. Here's a report.
1: The 12-year-old stepped out with innocence, carrying hopes of celebrating a friend's birthday. Within hours, those hopes turned into every family's worst nightmare. Her body was recovered from a pond, stuffed inside a sack. Grief soon turned into rage after the locals accessed the CCTV footage, where the girl was last seen with a man. Several villagers poured onto the streets. They blocked roads, occupied railway tracks, vandalized police vehicles, and lynched an accused as well. The cops are investigating allegations of abduction, gang rape, and murder. Police say the prime accused in the case, Anand Sardar, has been arrested. Earlier, Dibakar Sardar and Prabhas Mondol were arrested, while three others were detained for questioning. But as the district burned in outrage, politics quickly took center stage. On Sunday, TMC leaders cried super emergency, claimed that Mamata Banerjee had been placed under house arrest and wasn't allowed by the Shivendu Adhikari government to visit the victim's house. A team of TMC leaders reached Baroipur despite prohibitory orders and met the family of the 12-year-old girl on Monday. Later, Mamata Banerjee led a candle march protest in Kolkata. Several loyalists joined her as well. Earlier, the former chief minister spoke to the victim's family over the phone call.
2: সকলকে মিলে করতে হবে, কিন্তু সরকারের দায়িত্বটা প্রধান দায়িত্ব। গরিবুল ঘটনাকে নিন্দা করার কা কোই ভাষা নেই হ্যাঁ। মমতা ব্যানার্জি কালি জানে কো তৈয়ার থি, লেকিন পুলিশ সে উনকো জানে নেই দিয়া। মমতা ব্যানার্জি বরাবর যহাঁ পর লোক পীড়িত হ্যায় উহাঁ পর পৌঁছতি হ্যায়।
1: The BJP has dismissed the allegations leveled by the TMC, saying it as an attempt by the TMC to manufacture a controversy over a routine security arrangement. Chief Minister Adhikari had said that his government will ensure the girl's family gets justice and the perpetrators of the brutal crime are hanged.
3: Na ami kalkei unar babar shonge kotha bolechi. Unar baba bichar cheyechen. Jogonnotomo ghotona. সিট গঠন হয়েছে, কিন্তু এটুকু আমি বলে দিচ্ছি, পরিবার যেভাবে জাস্টিস চেয়েছেন, পরিবার সরকার এবং পুলিশের কাছ থেকে যে যে সহযোগিতা চেয়েছেন সেটা তারা পাবেন।
4: যদি আরো কেউ থাকে তারে আরো অ্যারেস্ট হবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমাদের সরকার কাউকে ছাড়বে না, এবং অপরাধীরা যদি উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় তারা অপরাধী। যেহেতু এটাতে একটা রিলিজিয়াস অ্যাঙ্গেল দেওয়ার চেষ্টা, ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে।
1: But beyond the politics, beyond the protest, one question echoes across Bengal. How did a child who left home to buy a birthday gift end up returning in a body bag? Until this question is answered, with justice, not just promises, the anger on Bengal's street is unlikely to fade. With Anupam Mishra and Indrajit Kundu, Bureau Report, India Today.
0: And in more news, there has been a big breakthrough in the 2025 Pahalgam terror attack case. The National Investigation Agency, that is the NIA, has named Pakistan-based Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed as an accused in its supplementary charge sheet, directly linking the 2611 mastermind to the conspiracy behind the April 22nd massacre in Pahalgam. The NIA says that Saeed has been charged both in his individual capacity and as the chief of the banned outfit that is Lashkar-e-Taiba, and the proxy outfit, the Resistance Front. The supplementary charge sheet alleges that Saeed planned, directed and monitored the cross-border terror conspiracy from Pakistan. It also expands on the original charge sheet by detailing Pakistan's role and the evidence gathered during this probe. Joining me on the phone line now is Indra Bahadur. Thank you so much for joining us. In this case, there are developments, particularly the charge sheet, tell us about it.
5: Look, this is a महत्वपूर्ण charge sheet that NIA has been issued. And in this charge sheet, NIA has Hafiz Saeed को सीधे जो supplementary charge sheet दाखिल की गई Hafiz Saeed का नाम सीधे इसमें आ रहा क्योंकि Hafiz Saeed लश्कर-ए-तैयबा का सरगना है और TRF का जो offshoot है उसके हिसाब से वो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को बड़े स्तर पर अंजाम दे रहा है पूरी NIA की जो जांच पहलगाम आतंकी हमले की हुई है जिसमें बैतरन घाटी में इतना बड़ा हमला आतंकवादियों के द्वारा किया गया था उसमें हाफिज सईद का सीधे सीधे नाम आ रहा है हाफिज सईद की अगर बात करें तो उसके लिंक सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से है और उसी की सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद अभी भी जो पाकिस्तान आर्मी है उसकी सुरक्षा में उसको रखा गया ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके से NIA ने जांच किया है क्या पाकिस्तान के हुक्मरान या फिर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI उसका सीधे तौर पर हाथ इसमें आ रहा है इन तमाम चीजों को जो है NIA अब इन्वेस्टिगेट कर रही है सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन महादेव चलाया गया जिसमें तीनों आतंकी जो थे उनको ढेर किया गया और इसके साथ ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ये भी जानकारी दी गई है कि हाफिज सईद से जुड़ा हुआ जो सैफुल्ला जट है जो कि मेन हैंडलर था वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ था जो बैतरन घाटी में आतंकी घुसपैठ करके यहाँ पर बड़े स्तर पर उन्होंने धर्म पूछ करके उन्होंने अटैक किया तो इन तमाम चीजों को लेकर के आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और NIA और भी इसमें जिन लोगों के शामिल होने की जानकारी आएगी उसको आगे की चार्जशीट में उसको दाखिल करेगी
0: ऑल राइट जितेंद्र रियली अप्रिशिएट योर टाइम थैंक यू फॉर दैट अपडेट दैट्स ऑल फ्रॉम मी थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग वी आर पुटिंग आउट दिस एंटायर शो ऑन आवर वेबसाइट एंड ऑल्सो ऑन द यूट्यूब चैनल

0: why can't Guru Prakash Paswan reach out to Ghanshyam Tiwari here and say that let's ensure that we work together towards it? It's about the devotees in general. Ghanshyam, 30 seconds.
1: Well, we hold BJP, the Prime Minister, RSS and VHP together responsible for this act of dishonesty that continues till date. Nobody knows the quantum of this scam. Nobody knows the actual people responsible. And and even
0: Ghanshyam has spoken. Guru, go ahead.
2: No, Maria, I think I am finally happy to hear the Samajwadi Party spokesperson say that nobody is aware of the quantum of this unfortunate thing. Finally, someone has said it, and I think I welcome it. But I think it's very natural for Samajwadi Party or the Congress Party to smell an opportunity here, to smell an opportunity for the UP state election. They are in politics, they are a political party, they will do it. Maria, you and I are law-abiding citizens. We have faith in the rule of law. Let us give it some more time. The faith in the trust.
0: Let's give it some more time. 22nd is another meeting.
2: But
0: all right, thank you so much.
2: One unfortunate incident.
0: Dr. Guru Prakash Paswan, Ghanshyam Tiwari, Rahul Ishwar and Sriraj Nair, appreciate your time. The donation theft row has sparked outrage across the country. But what do the devotees in Ayodhya feel? India Today spoke to those who were there, who condemned Chanda Chori, but at the same time reaffirmed that their faith in Lord Ram remains intact.
3: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि श्री रामचंद्र की आस्था अयोध्या देव भूमि और यहाँ का एक तरीके से वो धार्मिक स्वरूप, क्या उस पर भी असर पड़ा है? आइए लोगों समझते हैं जो यहाँ पर दर्शन करके निकल रहे हैं. दान चोरी को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन अयोध्या का क्या और राम जी का क्या और राम मंदिर का क्या, क्या उनकी छवि धूमिल करना उचित है?
4: इसमें चोरी से राम जी की छवि धूमिल नहीं हो रही है. हाँ. ये उन लोगों का किया धरा है जो यहाँ बैठे हैं, जिनको लालच दिख गया वहाँ पे.
3: आम लोगों की श्रद्धा कम नहीं हुई है?
4: श्रद्धा कम क्यों होगी?
5: नहीं, नहीं, कारण क्या? असर तो पड़ा है. लोग जो दान देना चाहते थे ना, उन्होंने अपने हाथों को रोक लिया है.
3: अयोध्या की खूबसूरती बनी हुई है, राम जी
5: की खूबसूरती बनी हुई है. अयोध्या का इतिहास ही खूबसूरत है. इनके उन लोगों जो चंद लोग आए हैं, 50 साल जिंदा रहेंगे, 100 साल रहेंगे, उनके करने से कुछ नहीं होता है.
6: भगवान श्री राम वही है और उनका दर्शन बड़े दिव्य ढंग से हो रहा है, बड़ा आनंद आता है. लेकिन ये घटना जो हुई वो निंदनीय है, घोर निंदनीय, इसमें कोई दोहरा नहीं.
3: तो आरोपियों पे कार्रवाई हो रही है?
6: निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है और सशक्त कार्रवाई और सशक्त कार्रवाई होनी चाहिए. और जो बड़ी मछलियां कही जा रही है, और SIT के जांच में यदि बड़ी मछलियों का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और बड़ी मछलियां यदि यहां फंसे तो निश्चित रूप से उनका भी ट्रीटमेंट अच्छे ढंग से होना चाहिए.
3: पर अयोध्या के जो टूरिज्म है, या लोग आते हैं, या घूमने भी आते हैं, दर्शन के लिए भी आते हैं, उस पर इसका कोई असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा?
6: उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं. श्रद्धा भाव सभी लोग पक्का है बिल्कुल. और हम सनातन धर्मावलंबी जो है, उस अटूट श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं, उस श्रद्धा के साथ यहाँ से जाते हैं. हाँ, इतना जरूर है कि एक कलंक जो है लगा है.
3: अयोध्या के रोजगार पर तो इसका असर नहीं पड़ेगा?
6: नहीं, रोजगार पर तो असर पड़ेगा ना. जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होगी तो थोड़ा मोटा असर पड़ेगा, लेकिन ये जो है संक्षिप्त कुछ काल के लिए है. जिस दिन ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, फिर से वही दशा हो जाएगी अयोध्या की.
3: कुल मिलाकर लोगों का यही कहना है इस पूरे मसले को लेकर कि चंदा चोरी जो हुई है उसके आरोपियों को पकड़ा जाए, कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन फिलहाल अयोध्या पर कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ा है और दर्शन भी सुलभ तरीके से यहाँ हो रहे हैं.

0: का क्या और राम जी का क्या और राम मंदिर का क्या, क्या उनकी छवि धूमिल करना उचित है?
1: इसमें चोरी से राम जी की छवि धूमिल नहीं हो रही है, ये उन लोगों का किया धरा है जो यहाँ बैठे हैं, जिनको लालच दिख गया वहाँ पे।
0: आम लोगों की श्रद्धा कम नहीं हुई है?
1: श्रद्धा कम क्यों होगी?
2: नहीं नहीं, कारण असर तो पड़ा है, लोग जो दान देना चाहते थे ना, उन्होंने अपने हाथों को रोक लिया है।
0: अयोध्या की खूबसूरती बनी हुई है, राम जी की
2: खूबसूरती बनी हुई है, अयोध्या का इतिहास ही खूबसूरत है। इनके उन लोगों जो चंद लोग आए हैं, 50 साल जिंदा रहेंगे, 100 साल रहेंगे, उनके करने से कुछ नहीं होता है।
3: भगवान श्री राम वही है और उनका दर्शन बड़े दिव्य ढंग से हो रहा है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये घटना जो हुई वो निंदनीय है, घोर निंदनीय, इसमें कोई दो राय नहीं।
0: तो आरोपियों पे कार्रवाई हो रही है?
3: निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है और सशक्त कार्रवाई, और सशक्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बड़ी मछलियां कही जा रही है, और SIT के जांच में यदि बड़ी मछलियों का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और बड़ी मछलियां यदि यहाँ फंसे तो निश्चित रूप से उनका भी ट्रीटमेंट अच्छे ढंग से होना चाहिए।
0: पर अयोध्या के जो टूरिज्म है, या लोग आते हैं या घूमने भी आते हैं, दर्शन के लिए भी आते हैं, उस पर इसका कोई असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा?
3: उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं, श्रद्धा भाव सभी लोग पक्का है बिल्कुल। और हम सनातन धर्मावलंबी जो है, उस अटूट श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं, उस श्रद्धा के साथ यहाँ से जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एक कलंक जो है लगा है।
0: अयोध्या के रोजगार पर तो इसका असर नहीं पड़ेगा?
3: नहीं, रोजगार पर तो असर पड़ेगा ना, जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होगी तो थोड़ा मोटा असर पड़ेगा। लेकिन ये जो है संक्षिप्त कुछ काल के लिए है, जिस दिन ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी फिर से वही दशा हो जाएगी अयोध्या की।
0: तो कुल मिलाकर लोगों का यही कहना है इस पूरे मसले को लेकर कि चंदा चोरी जो हुई है उसके आरोपियों को पकड़ा जाए, कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन फिलहाल अयोध्या पर कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ा है और दर्शन भी सुलभ तरीके से यहाँ हो रहे हैं।
4: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
6: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.

0: prohibitory orders and met the family of the 12-year-old girl on Monday. Later, Mamata Banerjee led a candle march protest in Kolkata. Several loyalists joined her as well. Earlier, the former chief minister spoke to the victim's family over the phone call. The BJP has dismissed the allegations leveled by the TMC, saying it as an attempt by the TMC to manufacture a controversy over a routine security arrangement. Chief Minister Adhikari had said that his government will ensure the girl's family gets justice and the perpetrators of the brutal crime are hanged.
1: উনার বাবা বিচার চেয়েছেন জঘন্যতম ঘটনা সিট গঠন হয়েছে কিন্তু এটুকু আমি বলে দিচ্ছি পরিবার যেভাবে জাস্টিস চেয়েছেন পরিবার সরকার এবং পুলিশের কাছ থেকে যে যে সহযোগিতা চেয়েছেন সেটা তারা পাবেন
2: যদি আরও কেউ থাকে তাহলে আরও অ্যারেস্ট হবে চিন্তার কোনো কারণ নেই আমাদের সরকার কাউকে ছাড়বে না এবং অপরাধীরা যদি উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় তারা অপরাধী যেহেতু এটাতে একটা রিলিজিয়াস অ্যাঙ্গেল দেওয়ার চেষ্টা
0: But beyond the politics, beyond the protest, one question echoes across Bengal. How did a child who left home to buy a birthday gift end up returning in a body bag? Until this question is answered, with justice not just promises, the anger on Bengal street is unlikely to fade. With Anupam Mishra and Indrajit Kundu, Bureau Report, India Today.
3: And in more news, there has been a big breakthrough in the 2025 Pahalgam terror attack case. The National Investigation Agency, that is the NIA, has named Pakistan-based Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed as an accused in its supplementary charge sheet, directly linking the 2611 mastermind to the conspiracy behind the April 22nd massacre in Pahalgam. The NIA says that Saeed has been charged both in his individual capacity and as the chief of the banned outfit, that is Lashkar-e-Taiba, and the proxy outfit, the Resistance Front. The supplementary charge sheet alleges that Saeed planned, directed and monitored the cross-border terror conspiracy from Pakistan. It also expands on the original charge sheet by detailing Pakistan's role and the evidence gathered during this probe. Joining me on the phone line now is Indra Bahadur. Thank you so much for joining us. In this case, the developments that have happened, particularly the charge sheet, tell us about it. Look,
4: this is the Mahatpur charge sheet NIA ke dwara jari kiya gaya hai. Aur is charge sheet mein NIA ne Hafiz Saeed ko seedhe, jo supplementary charge sheet dakhil ki gayi, Hafiz Saeed ka naam seedhe isme aa raha, kyunki Hafiz Saeed Lashkar-e-Taiba ka sargana hai aur TRF का जो ऑफशूट है उसके हिसाब से वो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को बड़े स्तर पर अंजाम दे रहा है पूरी एनआईए की जो जांच पहलगाम आतंकी हमले की हुई है जिसमें बैतरंग घाटी में इतना बड़ा हमला आतंकवादियों के द्वारा किया गया था उसमें हाफिज सईद का सीधे सीधे नाम आ रहा है हाफिज सईद की अगर बात करें तो उसके लिंक सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से है और उसी की सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद अभी भी जो पाकिस्तान आर्मी है उसकी सुरक्षा में उसको रखा गया ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके से एनआईए ने जांच किया है क्या पाकिस्तान के हुक्मरान या फिर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI उसका सीधे तौर पर हाथ इसमें आ रहा है इन तमाम चीजों को जो है एनआईए अब इन्वेस्टिगेट कर रही है सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन महादेव चलाया गया जिसमें तीनों आतंकी जो थे उनको ढेर किया गया और इसके साथ ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ये भी जानकारी दी गई है कि हाफिज सईद से जुड़ा हुआ जो सैफुल्ला जट है जो कि मेन हैंडलर था वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ था जो बैतरन घाटी में आतंकी घुसपैठ करके यहाँ पर बड़े स्तर पर उन्होंने धर्म पूछ करके उन्होंने अटैक किया। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एनआईए और भी इसमें जिन लोगों के शामिल होने की जानकारी आएगी उसको आगे की चार्जशीट में उसको दाखिल करेगी।
3: All right, Jitendra, really appreciate your time. Thank you for that update. That's all from me. Thanks so much for watching. We are putting out this entire show on our website and also on the YouTube channel. Thanks so much.